0: विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ कर के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहाँ तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए इसका पहले से ही SOP बना हुआ है। मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं उसको लेकर छात्रों के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए।
1: And NDTV's Prabhakar Kumar also joining us live from Patna tonight. He was also in Ranchi reporting extensively on these protests. Prabhakar, do you see the protests now winding up? Just stay with me for a moment, Prabhakar. Devendranath Matho has reacted. Let's listen in. He's been on hunger strike for 16 days now.
2: हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है और सबसे बड़ी बात जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उनको उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
3: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सर
2: देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही कम मैंने पूरी हो जाएगी हमारी डिमांड।
1: And remember, NDTV is always on the ground when it really matters. And that's the reason why you've seen Prabhakar, Padmaja and our team being the only mainstream network that was in Ranchi since the beginning of the protests until now, reporting on this big, big breakthrough for the students of Jharkhand.

0: who has defended it as transparent and only merit-based. And then we've had a heated exchange erupt in Tamil Nadu's assembly over political protocol and respect when it comes for the chief minister. TVK has questioned why Udayanidhi Stalin remains seated while the DMK hit back, saying standing up is a matter of personal choice. Let's begin this Tuesday morning with the BJP that yesterday finally unveiled its new organisational team, which is being seen as a big reset under Nitin Naveen. The new team has 65 members with a clear My formula. There are 12 women leaders, while 6 faces are under the age group of 40. The average age of the new team is around 54. There's a significant focus as far as the poll-bound state of Uttar Pradesh is concerned, with 8 faces in the list from the poll-bound state itself. Crucially, in what is being seen as a Sabka Saath message, 2 Muslim leaders have been included, 1 OBC, and we also have another Muslim. But the big political signal is as far as comebacks are concerned. We have Smriti Irani, who's back as the National General Secretary for Uttar Pradesh, while Ram Madhav returns as the National Vice President. There's another closely watched change, which is Amit Walia is out after heading the IT cell division. He was the IT cell chief for 11 years, now making way for Deepak Mahaske.
1: I believe ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें उसका हिस्सा बनाया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
3: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी।
4: मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ भाषण नहीं दिया, वो हमेशा चाहते हैं कि देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति हमेशा इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे, और इसके लिए हम संगठन के माध्यम से ये आज मौका मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। वो हमेशा गाइड करते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और आज संगठन के माध्यम से उनके मार्गदर्शन पर हम ज़रूर काम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
5: सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया है टीम में काम करने का। और नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट काम वहाँ पर सह संयोजक का मुझे मिला है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का। नेशनल टीम में चुनौतियाँ एज सच तो कुछ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेरे संगठन के बॉस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और जब मिलके काम करते हैं तो चुनौतियाँ चाहे कोई भी आए वो बहुत जल्दी हल हो जाती हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये चुनौतियाँ सब हल हो जाएंगी।
6: अमित मालविया जी का जाना तो बहुत ही आवश्यक था। और रही बात जो बाकी टीम आई है, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप शिद्दत से काम कर लें तो एक अलग बात है, बट जिस तरीके से पार्टी ने और आपकी टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति करी है, अगर उसी सिस्टम से आप चलेंगे तो देश अब धोखा खाने वाली नहीं है। 2029 में भाजपा की और नितिन नवीन जी की नई टीम को भी टाटा बाय बाय हम करेंगे।
0: It was just last year in July of 2025 when Smriti Irani spoke to NDTV's managing editor Shiv Arur, where she said she's a part-time actor but a full-time politician. Listen in.
4: Like life comes full circle.
7: Do you miss active politics? You know, politics
4: but
7: goes up and
4: I'm
7: down.
4: But who says I'm not an active politician?
7: Are you still, do
4: of
7: you still consider yourself a politician?
4: I'm a politician first, but they used to earlier say actor turned politician.
7: Yeah.
4: Somebody last night in some newsroom said, well, actor turned politician turned actor turned what?
7: Yeah.
4: The idea that a human being could do both and successfully so is an idea which will be very difficult to grasp. Because I'm the only one who's done it.
7: No, because I know you keep in touch with Amethi, you keep visiting.
4: I am working.
7: You've got a base there, you're still working.
4: But
7: there.
4: I'm working, not only in Amethi, I'm working. I was last dispatched, you're given assignments within your organization. Yeah. My last assignment was in Bikaner.
7: Right.
4: Before that, I was dispatched to Ranchi, Jharkhand. So the organization keeps giving you work, and you have to work according to whatever your leadership decides.
7: Yeah, right now, in front of you, Ms. Irani, is this big TV project. It's obviously going to be a big thing. You know, it's going to run for a while. It's going to take up a lot of your time and energy. Do you see actor turning back into a full-time politician
4: but
7: at some
4: point?
7: I
4: am a full-time politician and a part-time
7: actor. So this is just a side project then?
4: It is a side project. For most consumers, the project is not one individual.
7: Yeah,
4: it's always a group of actors coming together, a group of writers coming together. I am, yes, very humbly so, the most recognizable face out of that mix of people.
7: Yeah.
4: But I'm a full-time politician, a part-time actor, just like many politicians are part-time lawyers, part-time teachers, part-time journalists. I just happen to be a bit...
7: So you're a full-time politician who's taking
4: actor,
7: some time out to do this show?
4: No, I've done it simultaneously, which is what I think is difficult to grasp. But like I said, the only difference between me and my other political colleagues is they are part-time lawyers and there's no videographer along with them. There's no makeup person along with them. There's no script writer.
7: Yeah.
4: It's just that we're all from different vocations. I'm just the one in the spotlight.
0: Moving on now, big relief coming in for the students in Jharkhand as the Hemant Soren government has finally agreed to their demands and cancelled the examination of the JSSC CGL. This is a decision that's come after days of protests, 3 weeks of protests and mounting pressure from the students demanding action over the examination process. Announcing that decision is the Chief Minister saying that this is after a comprehensive inquiry that now is underway. It will be conducted into all errors, minor or major, that have occurred since 10 years, in fact, over 10 years since 2014, and all exams linked to TDPL, including JSSC, will be cancelled. In fact, hailing the government is Devinder Mahato, who has been on a hunger strike since the 2nd of August, has finally ended his fast, said that he is satisfied by the government-led probe and is grateful to the students for their support and to the government for accepting the demands of the students. However, protesters are very adamant that they want a CBI probe into the matter.
8: आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
9: आगे चूंकि हमने कई बार

0: अपने जीवन पे देखा है कई एग्जाम को रद्द होते हुए, कई एग्जाम पर सीबीआई जांच होते हुए, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच होते हुए, लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि इससे छात्र को बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाता है। ये आज सीजीएल रद्द हुई, यही सीजीएल को मैंने ही अपने छात्रों के साथ 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली, फिर पेपर लीक हुआ। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो गारंटी दे कि आने वाले जुगो जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए।
1: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि सीजीएल एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सब की बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा।
2: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है।
3: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
4: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
5: जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
6: Certain tracks to breaking news coming in, and this is in regard to the national capital, the DU of

0: good morning. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Vada. We have a whole lot lined up for you, including Jharkhand's government that's agreed to students' key demands, but the protesters are firm on a CBI probe into the matter. Jharkhand student leader Devinder Mahato has ended his hunger fast. And now let's just get you details of the headlines coming up first before we get into what's happening in Jharkhand. The BJP has unveiled a major organisational overhaul under the party president Nitin Naveen, with a new team taking shape ahead of Mission 2029. Ram Madhav has returned to the party's top deck. Smriti Irani is back in the war room, and Deepak Mahaske has been appointed as the new IT cell chief. He replaces Amit Malviya as the BJP sharpens its organisational push. A major victory for protesting students in Jharkhand, with Hemant Soren's government accepting their key demands. The JSSC CGL examination and all exams linked to that disputed recruitment process have now been cancelled, with irregularities said to be probed. But the protesters are firm. They want a CBI probe, not the CID probe that has been going on. A political showdown has erupted in Andhra Pradesh over teacher recruitment exams. The YSRCP has alleged irregularities and questioned the selection process. While it is Chandrababu Naidu, the chief minister, who has defended it as transparent and only merit-based. And then we've had a heated exchange erupt in Tamil Nadu's assembly over political protocol and respect when it comes for the chief minister. TVK has questioned why Udayanidhi Stalin remains seated, while the DMK hit back, saying standing up is a matter of personal choice. Let's begin this Tuesday morning with the BJP that yesterday finally unveiled its new organisational team, which is being seen as a big reset under Nitin Naveen. The new team has 65 members with a clear My formula. There are 12 women leaders, while 6 faces are under the age group of 40. The average age of the new team is around 54. There's a significant focus as far as the poll-bound state of Uttar Pradesh is concerned, with 8 faces in the list from the poll-bound state itself. Crucially, in what is being seen as a Sabka Saath message, 2 Muslim leaders have been included, 1 OBC, and we also have another Muslim. But the big political signal is as far as comebacks are concerned. We have Smriti Irani, who's back as the National General Secretary for Uttar Pradesh, while Ram Madhav returns as the National Vice President. There's another closely watched change, which is Amit Malviya is out after heading the IT cell division. He was the IT cell chief for 11 years, now making way for Deepak Mahaske.
1: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: मुझे ध्यान में आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें उसका हिस्सा बना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है, और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
3: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है, उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी।
4: मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ भाषण नहीं दिया, वो हमेशा चाहते हैं कि देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति हमेशा इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे, और इसके लिए हम संगठन के माध्यम से ये आज मौका मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, वो हमेशा गाइड करते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और आज संगठन के माध्यम से उनके मार्गदर्शन पर हम ज़रूर काम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
5: सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष

0: बार अपने जीवन पे देखा है कई एग्जाम को रद्द होते हुए, कई एग्जाम पर सीबीआई जांच होते हुए, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच होते हुए, लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि इससे छात्र को बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाता है। ये आज सीजीएल रद्द हुई, यही सीजीएल को मैंने ही अपने छात्रों के साथ 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली, फिर पेपर लीक हुआ। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए।
1: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि सीजीएल एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा।
2: आज सच्चाई का जीत हुआ है, सच्चाई का जीत।
3: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
4: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है यहाँ पर। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
5: जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
6: Certain tracks to breaking news coming in, and this is in regard to the national capital, the DU of

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे इनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउएवर कमिंग अबाउट फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड विद हेमंत सोरेन गवर्नमेंट दैट हैज एटलीस्ट एग्रीड टू दोस डिमांड्स एंड कैंसल द जेएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। The discussion has, been going on now for days. There have been 16 days of that endless fast that's come to an end by Devendra Mahato. The decision that's come after those protests that and mounting pressure from students demanding action in this particular regard. Announcing the cabinet decision was the chief minister himself. He said that there was a comprehensive inquiry which will be conducted into all errors, minor and major, that have occurred ever since 2014 and all exams linked to the TDPL, including the JSSC, that will be cancelled and hailing the government. It was Mahato who went ahead and ended his fast that he'd been on fast, to remember, from the 2nd of August, and that marked 16 days of being on that endless fast. While he's been grateful to the students for their support and the government for accepting those demands, but he's gone ahead and said that all demands haven't been met, and which is why the protests will continue.
7: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए।
0: आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज हड़ताल के 16वें दिन
8: चुप रहो। अरे भाई अपना काम कीजिए, चुप रहो अपना दर्शक झगड़ा क्या आप कर रहे हैं, हम कुछ करिए नहीं रहे,
9: मुंह बंद रखो ना यार,
8: तुम बंद रहो।
0: मुझे आपका आशीर्वाद
8: गड़बड़ा नहीं
0: हम लोग का आवाज और कुछ ना हो रहा बहुत बल
10: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
11: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, या हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
10: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है यहाँ पर। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है,
12: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
13: बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा, और इतने मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई।
14: देर से ही सही, लेकिन सरकार ने डिसीजन छात्र हित में ली है, सरकार को धन्यवाद, लेकिन अभी एक कदम और बढ़ करके सरकार को आगे आने की जरूरत है। CBI जांच, दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए।
5: Moving on now to Andhra Pradesh, and it is the mega DSC teacher recruitment that has emerged as a fresh political flashpoint when it comes to TDP and the opposition of the YSRCP that are now trading charges over alleged irregularities in the selection process and the conduct of the examination. While the opposition held a statewide protest, it stepped up its attack on the Andhra Pradesh government. And we're talking about the former chief minister and YSRCP president, Jagan Mohan Reddy, who has alleged paper leakages and also manipulation of merit lists and irregularities in the sports quota. Now, it is Chandrababu Naidu, the chief minister, strongly defending the recruitment drive and is accusing YSRCP of attempting to stall it through litigation. With this, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more.
15: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
16: कुछ इससे भी अनोखा
15: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
17: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
18: देश का टायर JK टायर।
19: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
20: वाओ मामा क्या स्वाद है।
21: अरे मेरे राजा,
22: सबका राजा आरती और मसाला।
23: So many payment apps, but which one is safe?
24: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable, and you keep getting rewards as well. You can also get 20 rupees cash back on your first payment above 20 rupees. Use Bheem app to pay.
25: It's the Mahi way.
26: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
27: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
27: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities. A new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
3: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
27: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंबिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
1: रियली?
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
1: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
2: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
1: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, the Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal. New possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations.

0: Last dispatched, you're given assignments within your organization.
1: Yeah.
0: My last assignment was in Bikaner.
1: Right.
0: Before that, I was dispatched to Ranchi, Jharkhand. So the organization keeps giving you work, and you have to work according to whatever your leadership decides.
1: Right now, in front of you, Ms. Irani, is this big TV project. It's obviously going to be a big thing. You know, it's going to run for a while. It's going to take up a lot of your time and energy. Do you see actor turning back into a full-time politician
0: but
1: at some point?
0: I am a full-time politician and a part-time
1: actor. So this is just a side project then?
0: It is a side project. For most consumers, the project is not one individual.
1: Yeah,
0: it's always a group of actors coming together, a group of writers coming together. I am, yes, very humbly so, the most recognizable face out of that mix of people.
1: Yeah.
0: But I'm a full-time politician, a part-time actor, just like many politicians are part-time lawyers, part-time teachers, part-time journalists. I just happen to be a bit...
1: So you're a full-time politician who's taking
0: actor,
1: some time out to do this show?
0: No, I've done it simultaneously, which is what I think is difficult to grasp. But like I said, the only difference between me and my other political colleagues is they are part-time lawyers and there's no videographer along with them. There's no makeup person along with them. There's no script writer.
1: Yeah.
0: It's just that we're all from different vocations. I'm just the one in the spotlight.
2: All right, meanwhile, soon after Deepak Mahaske's name was announced, the 58-year-old chemistry professor turned politician was asked how he would engage with the youth. To which he replied that it would be through reels and that the youth were already on social media and that the party would try to reach them through this same. In fact, here's what he told my colleague Vishnu Shom.
3: I'm just curious to know how important is it for the BJP with elections coming up to spread the message not only of the government but of the party. How is social media essential for communications more than ever before?
4: देखिए दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि I am replacing Amit Malvi. हमारी पार्टी में हम किसी को replace नहीं करते हैं. हमको अलग-अलग दायित्व मिलता है.
3: जी.
4: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था. और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है और एक तो ये विषय था. दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियाँ और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना.
3: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेन जी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
4: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं.
3: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
4: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही. यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट है, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीजें रहेंगी और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके.
2: All right, let's turn our attention to breaking news we're tracking at the moment. As the three-month deadline for Maharashtra's auto rickshaw and taxi drivers to learn Marathi expires, Pratap Sarnaik, the state transport minister, has a message for everyone. He's warned that those who refuse to speak the language before the regional transport office officials will face strict action. इनफैक्ट

0: But calling this the end of the students' movement, you must believe that would be premature. The protesters have welcomed this cancellation, but they are still demanding a CBI investigation. And there's also another difficult question for the government there. Candidates who cleared the JSSC CGL and have already been appointed to government posts, they now face uncertainty over what happens to their jobs. Listen in to what Hemant Soren has said, followed by other crucial reactions.
1: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए।
2: सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो विलिखित के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो।
3: जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का अपना आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन
4: भाई वांचो को दिखाई दे
3: डिमांड पूरी कर दी है सरकार।
5: अब जो है
6: सर आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
0: On that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking at the moment. The special investigation team probing the alleged donation theft at the Ayodhya Ram temple has now given a clean chit to the trust's former general secretary, Champat Rai, in its first report. And the Home Department has examined the report and handed it to the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust for further action now. This final report does not name former trust general secretary Champat Rai nor ex-trust member Anil Mishra. Both the members, you remember, had resigned from their positions at the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on the 27th of June, to be precise, amid an ongoing probe into alleged irregularities involving temple donations. That second special investigation team, which was formed under the Supreme Court supervision, that is continuing its probe into the case as we speak. Ranveer is tracking the finer developments for us. He joins us live with the clarity we need. Ranveer, so a clean chit to the trust former General Secretary Champat Rai, who had said that he'll remain mum until the investigation is complete, while also clearing the name of Anil Mishra, that former member of the trust?
7: Yes, SIT submitted its final report to UP government as well as Ram Mandir Trust. And this report says that Champat Rai is not anyhow involved in the overall scam, or you can say the embezzlement case. First, the SIT submitted its preliminary report in which there was Champat Rai's name was missing, and so many questions were raised that why Champat Rai is being exempted because he is the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to

0: मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं और हर स्टेट हर रीजन समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है।
1: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी।
2: अविनाश जी, मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें उसका हिस्सा बना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
3: देखिए, मेरे जैसा साधारण सामान्य परिवार से आने वाला एक कार्यकर्ता, लंबे समय से मैं पार्टी के लिए अच्छा लगातार काम करता रहा हूँ, ये हमारे आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना दायित्व, इतना भरोसा उन्होंने व्यक्त किया है।
4: मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ भाषण नहीं दिया, वो हमेशा चाहते हैं कि देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति हमेशा इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे। और इसके लिए हम संगठन के माध्यम से ये आज मौका मिला है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, वो हमेशा गाइड करते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और आज संगठन के माध्यम से उनके मार्गदर्शन पर हम ज़रूर काम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
5: सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया है टीम में काम करने का। और नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट काम वहाँ पर सह संयोजक का मुझे मिला है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का। नेशनल टीम में चुनौतियाँ एज सच तो कुछ नहीं रहेंगी क्योंकि हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेरे संगठन के बॉस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जब मिलके काम करते हैं तो चुनौतियां चाहे कोई भी आए वो बहुत जल्दी हल हो जाती हैं और मुझे पूरा यकीन है ये चुनौतियाँ सब हल हो जाएंगी।
6: अमित मालविया जी का जाना तो बहुत ही आवश्यक था। और रही बात जो बाकी टीम आई है, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप शिद्दत से काम कर लें तो एक अलग बात है, बट जिस तरीके से पार्टी ने और आपकी टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति करी है, अगर उसी सिस्टम से आप चलेंगे तो देश अब धोखा खाने वाली नहीं है। 2029 में भाजपा की और नितिन नवीन जी की नई टीम को भी टाटा बाय बाय हम करेंगे।
7: So let's talk about Nitin Naveen's this new my formula when it comes to the BJP. We have to begin with, you know, the focus has been on women and youth. To start with, we have Smriti Irani, who's made a huge comeback as the National General Secretary. Second in place is Vasundhara Raje Sindhya coming in as the National Vice President. We also have Puran Deshwari joining us as the National Vice President. And then there's Bharti Praveen Pawar as the National Vice President. The other one, as a female representation that we are going to be seeing.

0: is Fagnon Cognac as the National Secretary, Kavita Pathidar joining as the National Secretary. And then we also have, Hemang Joshi, the Yuva Morcha President, and then Fagnon Cognac as the National Secretary, as we mentioned. And then others that are joining this new team is Rohan Gupta as the National Secretary, Jay Prakash as the National Secretary, Siddharth Shambhu as the National Secretary as well, Mriganka Dio Burman there as National Secretary, Anil Antony joining as the National Secretary, and Sangeeta Yadav also the National Secretary, Vishnu Vardhan Reddy, All Cells joint coordinator, Rajiv Babbar, North East joint coordinator, Shivanand Dwivedi as the social media co-convener, and Arun Yadav as the social media co-convener as well. Now, my colleague Vishnu Sob spoke with the new BJP IT cell chief. He's taken charge from Amit Malviya. He spoke with Deepak Mahaske. Let's listen in.
1: I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message not only of the government but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
2: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी. हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है.
1: जी,
2: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुँचाना.
1: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेन जी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
2: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
1: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
2: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके.
0: And that is, of course, that exclusive interview with the new BJP IT cell chief. The BJP's digital messaging basically is this, they have a new commander after more than a decade. Do remember, Amit Malviya has been in that position for 11 years and leading the party's online messaging and political warfare. The BJP president has now appointed Deepak Mahaske as the party's new national social media convener. But until Malviya, Mahaske is really not known to be a prominent digital face. Let's get you more details. Let's deep dive into Mr. Mahaske.
3: A new face is taking charge of the BJP's social media ecosystem. An organization man from Chhattisgarh, Mahaske is the latest addition to Nitin Naveen's national team. His appointment comes at a time when elections are increasingly fought, not just on the ground, but across social media platforms. But Mahaske's political profile is markedly different from his predecessor, Amit Malviya. For years, Amit Malviya was one of the BJP's most recognizable digital warriors. Sharp political messaging, rapid responses, and aggressive online campaigns became closely associated with the BJP's digital strategy. Mahaske comes with a very different reputation. His political work has largely been behind the scenes, involving voter analysis, electoral data, campaign management, and targeted outreach. Chemistry master's degree, diploma in cement technology, training in computer programming, a former college-level chemistry teacher, and then a career spanning technology, agriculture, and politics. Mahaske has worked in horticulture, organic farming, and agriculture for more than three decades. His association with the BJP's technology ecosystem goes back to around 2009. Mahaske has served as chief and spokesperson of the BJP's Chhattisgarh IT cell. He has worked on electoral campaigns and data analysis across several assembly elections. Party sources say he has helped build beneficiary databases and data-driven outreach models. The idea: identify voters, understand their concerns, and communicate with them more precisely.
4: Priorities Bharatiya Janata Party ki bilkul spasht rehti hai ki janta ki seva ke liye Bharatiya Janata Party ko chunav jeetna hai. Aur pran pran se social media ke madhyam se hum aur hamari puri team isme kaam karegi.
3: Mahaske has made fighting misinformation one of his immediate priorities. His message is that propaganda may create a temporary impression, but sustained communication and logical responses are needed to counter misconceptions. That could become a key component of the BJP's digital strategy going forward.
4: Look, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है. एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है. मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे.
3: The BJP has changed the man at the helm of its social media operation. Whether this marks a deeper shift in the party's digital strategy from the warrior to the strategist will become clearer as the next election battles take shape. With Aishwarya Jain, Bureau Report, NDTV.
0: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more. Stay on.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: Let's just get you break news coming in, and this is in regard to it is of course Devendra Mahato, who has called off his hunger strike late last evening, as after Hemant Soren's government cancelled all exams and recruitment need for government jobs following weeks and weeks of student protests. Thank you.

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे उनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउ
7: दिस इज NDTV. When it really matters.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: Let's just get you break news coming in, and this is in regard to it is of course Devendra Mahato, who has called off his hunger strike.

0: अरखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना अरखंड सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा जिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका आमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने आमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: So, Anand, my colleague joining us in order to get us details. So, the students will continue their protests until we achieve total victory. पूरी victory के लिए और क्या करना पड़ेगा हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट को?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे इनको भरोसा नहीं है, इसलिए जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउएवर कमिंग अबाउट फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड विद हेमंत सोरेन्स गवर्नमेंट दैट हैज एट लीस्ट एग्रीड टू दोस डिमांड्स एंड कैंसल द जेएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। The discussion has, been going on now for days. There have been 16 days of that endless fast that's come to an end by Devendra Mahato. The decision that's come after those protests and mounting pressure from students demanding action in this particular regard. Announcing

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे इनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउएवर कमिंग अबाउट फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड विद हेमंत सोरेन गवर्नमेंट दैट हैज एटलीस्ट एग्रीड टू दोस डिमांड्स एंड कैंसल द जेएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। The discussion has, been going on now for days. There have been 16 days of that endless fast that's come to an end by Devendra Mahato. The decision that's come after those protests that and mounting pressure from students demanding action in this particular regard. Announcing the cabinet decision was the chief minister himself. He said that there was a comprehensive inquiry which will be conducted into all errors, minor and major, that have occurred ever since 2014 and all exams linked to the TDPL, including the JSSC, that will be cancelled and hailing the government. It was Mahato who went ahead and ended his fast that he'd been on fast, to remember, from the 2nd of August, and that marked 16 days of being on that endless fast.

0: While he's been grateful to the students for their support and the government for accepting those demands, but he's gone ahead and said that all demands haven't been met, and which is why the protests will continue.
1: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके

0: JP. The party says Sonia Gandhi has served the nation despite huge personal losses and is seen by Indians as their daughter, as their beti, as their bahu. Take a look at some of those reactions coming in.
1: Sonia Gandhi is not even Baisak Sadia. Sonia Gandhi is not a Rastadora. She is not a Bandro. ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನೆ ಪನ್ನೆಗಳು ಏನೇನು ನಡೆದವೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
2: Let's see what action BJP takes against this minister, because he has insulted a woman who has given everything, whatever was with her. She has lost her, her mother-in-law, she has lost her husband in a very young age, but still she served the country very gratefully. People of India has accepted her as a beti of India. And she has also retaliated with the same in the same manner, with the same feelings and the same emotions. Now this fellow has insulted the culture of India. Now let's see what action Modi ji takes against this kind of a statement, which is bad in taste.
0: Shifting attention now to battleground Uttar Pradesh, cabinet ministers' remarks have sparked a huge political row. Inputs coming in right now on the broadcast. Sanjay Nishad has warned the BJP that it could lose power. Sanjay Nishad is the founding president of the Nishad party. He's a cabinet minister in UP and he's come out with an important statement just 6 months ahead of those crucial elections and a day after BJP has rejigged its entire organization. Now, why this is significant? Well, he has said that the BJP needs to pay attention to what he is talking about, what the signals from the ground are coming in. And he has made these comments regarding the issue of reservation for the Nishad community, something that is likely to be a big issue for the BJP going into these elections. Listen into what Sanjay Nishad said when he was celebrating the 11th Foundation Day in Lucknow. And then we tell you more why this story is going to be significant for battleground Uttar Pradesh.
3: दलील के साथ अपील करता है कि दलील के साथ एक अपील है, इससे हाथी से एक बंगा मैं नहीं सुना तो सत्ता से बाहर हो गई, भाजपा भी नहीं सुनेगी तो भाजपा भी
0: All right, UP minister has stoked a row ahead of elections and it comes down to the key issue with regard to reservation, something that is already now part of a national discourse, something that is likely to find resonance in the upcoming elections in UP as well, more so given the fact that SP's big blank has been around the PDA, which is the Pichra Dalit Adivasi, though Dalit is not part of SP's core vote bank. Be that as it may, this is likely to be a major poll plank for all political parties. Let's try and connect with Fakhrul Hasan Chand, who represents the Samajwadi Party, joining me on the phone line for more on this. Fakhrul Hasan ji, aapke kya reaction hai? Your first reaction to what Sanjay Nishad has said to the BJP?
4: Dekhiye, Sanjay Nishad natak kar rahe hain. Har baar jab bhi chunav aata hai, wo 10 saal se Bharatiya Janata Party ke saath hain. और वो जो है आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उसी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को उनका हक अधिकार आरक्षण नहीं मिलता. संजय निषाद जी क्यों सत्ता की मलाई कह रहे हैं, क्यों सत्ता से चिपके हुए? अगर आरक्षण भाजपा ने 10 सालों में नहीं दिया, उनके समाज को भी नहीं दिया, तो क्यों वो मंत्री बने हुए? सबसे पहले तो उनको मंत्री पद छोड़ना चाहिए, लेकिन वो केवल नाटक कर रहे हैं कि आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे. तो सत्ता से बाहर तो दो समाजवादी पार्टी ने दो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हाफ किया ही है. लोकसभा में जो दिल्ली की सरकार है वो बैसाखी की उत्तर प्रदेश के कारण नहीं चल रही. तो ये केवल नाटक है. इनको पता है कि इस तरह की बात करके अपने अपने समाज में वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, पिछड़ों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पिछड़ा जाग चुका है. पिछड़े ने 2024 में भी संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, राजभर हो, इन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया था और आने वाले समय में भी जवाब देगा. और ये नाटक से काम चलने वाला नहीं. अगर उनको इतना दर्द है पिछड़ों के आरक्षण का
0: तो देखते हैं. जी, कितना बड़ा ये मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में ये देखना है, बट ये बात सही है कि राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। फखरुल हसन चंद, थैंक्स मच फॉर स्पीकिंग टू मी। इनफैक्ट लेट मी गेट इन माय कॉलीग अजय दुबे फॉर मोर ऑन दिस। अजय दुबे जॉइंस अस लाइव फ्रॉम लखनऊ फॉर अपडेट्स ऑन दिस। अजय, as far as Sanjay Nishad is concerned, yes, he is a politician who of course typically sings in different tunes, but the issue that he is raising about reservation, how much is it likely to resonate in battleground Uttar Pradesh?
5: See, in Uttar Pradesh, we call Sanjay Nishad a weather scientist, because he behaves according to the weather. That is what a politician and the experts say about him. And important most part, right now he's trying to, get more and more bargain-related potential. What comments he's making regarding the BJP, what comment he's making regarding his caste. We've seen same stories, same script during 2022 assembly election. At that time, before election, he was talking such things. He just wants to increase his numbers. He wants more and more seats. That is what experts are saying. What we are observing regarding his comments is that when he is targeting BJP, when he is giving challenges to BJP, with that he is also targeting and accusing Samajwadi Party for his community. So here in Uttar Pradesh, Sanjay Nishad, his influence is much into Purvanchal and a little bit of Awadh. And in the parliament election, we have seen his son lost his election. So is he having that much of potential to do bargain? That is what we can see with such frustration making comments from Sanjay Nishad.
0: All right, Ajay, I'm going to leave it there. Let's see how this really pans out. An issue important, but yes, Sanjay Nishad is someone who's known to be a fair weather politician. Turning attention now to the other important story coming in from Uttar Pradesh. This is regarding the Chanda Chori issue, where SIT's final report into the alleged Ram Mandir donation theft has now out, and it has given a clean chit to former Trust General Secretary Champat Rai, former Trust member also Anil Mishra. The probe had in fact raised allegations ranging from donation embezzlement, theft of devotees' offerings, to questions over counting process, SOPs, recovery of the cash, oversight of donations. Those are very serious issues. The fact that there were dark spots with regard to CCTV. All of those have now been examined by the SIT. And they have given a complete clean chit to both Champat Rai and Anil Mishra. That report has been submitted to the government. And let's see whether or not it actually leads to any further action or not. Let's first take a look at some reactions that are coming in right now. All right, shifting focus away from Uttar Pradesh now on to Jharkhand. Turning attention now to the big relief that came for students late yesterday night in Jharkhand after the Hemant Soren government finally agreed to their demand, cancel the two important examinations, the JSSC as well as the other one, which was regarding the JSPC. The decision comes after 24 days of protests, of hunger strike, mounting pressure from the students, which asked for action over examination process. The Chief Minister said that a comprehensive inquiry will be conducted into all the errors that have taken place. The errors were very clear. It was pointed out that the company, that is TDPL, which was blacklisted in other state governments, conducted these examinations end-to-end. And those gross errors and allegations is what led the students to protest for 24 days. Devendranath Mahato, who was on a hunger strike since the 2nd of August, broke his fast yesterday and said that he was thankful that these demands have now been fulfilled.
6: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में हैं। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है। अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए।
7: सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मान्य शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो विलिखित के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो।
8: आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन
9: भाई वांचो को दिखाई दे
8: डिमांड पूरी कर दी है सरकार।
10: अब जो है सर आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
11: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
12: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
13: हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
14: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
15: बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा। और इतने मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई।
16: देर से ही सही लेकिन सरकार ने डिसीजन छात्र हित में ली है, सरकार को धन्यवाद। लेकिन अभी एक कदम और बढ़ करके सरकार को आगे आने की जरूरत है, CBI जांच, दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए।
17: मैम जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी क्या वो मान पाया?
18: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ 6 अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
19: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, CGL जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
20: अब झारखंड सरकार को ये निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा? दिल्ली में आंदोलन शुरू होते ही सरकार ने वार्तालाप शुरू किया था, मंत्री लोग जाके मिले, बार बार चर्चा हुई, आंदोलनकारी नहीं मान रहे थे, यहाँ की विद्यार्थी जो आंदोलन कर डिमांड रखे थे उस पर सोचने के लिए तैयार नहीं था सरकार, और पहले बातचीत करके कर लेते तो इतना समस्या नहीं होता। इस प्रकार बड़ा आंदोलन चलता है तो समस्या सबको होता है, बच्चे बीमार हो गए, उनका ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्यों ये सब ड्रामा करे? सरकार का कॉन्फिडेंस कम है क्या? अच्छा है, उन्होंने जो वचन दिया उसको निभाए। विद्यार्थियों की उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो तो आंदोलन करेंगे।
1: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
0: Important update in the Tushar Sharma death case. CBI's chilling charge sheet in the Tushar Sharma death case, where her final message to her co-sister paints a rather chilling and a disturbing picture of her state of mind. 90 minutes before dying and taking her own life, Tushar wrote, "Let me die in peace right now." She wrote this to her co-sister and asked her to tell someone to collect her belongings the next day. Minutes later, the CCTV captured Tushar Sharma walking alone towards the terrace, that video that everyone saw. The CBI charge sheet claims that Tushar sustained mental harassment after marriage, including abortion-related pressure, humiliation, emotional abuse, and character assassination. It also says that Tushar was repeatedly called a murderer over the abortion. The CBI further says that Tushar Sharma told her mother that her husband had become both aggressive and violent and that she was very scared for her life. So that's the latest details coming in from the CBI charge sheet. Remains to be seen what happens next in the case. All right, on that note, slipping into a very short break. We come back with lots more on the other side of Breaking Crown. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn. India is chasing years faster, bolder, more restless. It doesn't stop, neither do we. NDTV, when it really matters.
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
1: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न। इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर, बोल्डर, मोर रेस्टलेस। इट डजंट स्टॉप, नाइदर डू वी। NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue.

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा ये रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा जिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague, joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे इनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स
5: Let's just get you break news coming in, and this is in regard to it is of course Devendra Mahato, who has called off his hunger strike late last evening, hours after Hemant Soren's government cancelled all exams and recruitment need for government jobs following weeks and weeks of student protests. Thank you.

झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में

0: पेपर लिखना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी
1: Let's now get you more details that are coming in right now regarding the ongoing issue with regard to Meta versus the government. Meta, it seems,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं हजारों।
2: Good afternoon, viewers. You're watching Breaking Ground with me, Gauri Dwivedi. There's lots lined up on the show, including the language row, which makes a comeback in Maharashtra. Hindi versus Marathi is making a comeback. We get you all those details. But first up, as always, let's get you the big headlines that we have for you this hour. First up, politics over Tamil Nadu Chief Minister Vijay's office tender peaks as opposition questions the 5.5 crore rupee tender issued. DMK cites irregularities, asks if it's corruption or is this gross administration lapses. Politics over Vijay Trisha salute on Independence Day as DMK mouthpiece takes on

0: roaming across the streets of Maharashtra in Mumbai specifically, and also wherein they will be stopping these rickshawalas and asking them to communicate in Marathi. If not done so, an ultimatum will be given. A 30-day time period has been allotted for them to learn the language, and after which a temporary suspension will be done, and if not learnt within 3 months of time period, then these rickshawalas and their licenses will be suspended. Now this of course initially looked like a bigger controversy, that the government is directly participating into it and asking the rickshawalas to learn the language compulsorily without any exception. But later the government as well as the RTO offices in Mumbai have too begun classes wherein these rickshawalas had been called. Now talking about the data and figures in Maharashtra, in Mumbai there are more than 9 lakh of these rickshaw drivers that are present, out of which only around 1.5 lakh rickshawalas have participated into these classes, whereas the rest of them have not really formally come on board, which is why today a program too was held by the government wherein officials including the transport minister, Pratap Sarnaik, look at the amount of
1: administrative time, energy, resources are being put into this policy. Now, to train 9 lakh auto drivers, assuming let's say 50% of them don't know Marathi, look at the amount of money being spent. I'm going to come back to that story, but I'm shifting focus right now to another important press conference that the BJP is holding.
2: Duniya ki sabse badi, dusre number ki abadi, jis jo dharm
3: कि प्रिवेंशन ऑफ
4: राष्ट्रपति
3: जो बना नहीं। किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी। उसके बाद फिर नया आंदोलन शुरू हो गया था बहुत दिन से, तब अभी अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि नेशनल एंथम वंदे मातरम, नेशनल जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसका भी कोई उपहास करेगा, अपमान करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, 3 साल की सजा। ये कानून बन गया है और वो कॉपी मेरे पास है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बॉयकॉट कर गए अलग बात है, लेकिन ये संविधान में इस कानून में बदलाव हो गया है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, तो मिस्टर खड़गे, अगर आप व्यंग करते हैं भाजपा के लोगों पर कि इन लोग फ्रीडम मूवमेंट में कहां थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता आजादी के आंदोलन के थे कि नहीं, जेल गए कि नहीं, 1950 में उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं संविधान सभा में ये सम्मान मिलेगा, तो आप किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब मैं इसका कारण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी धो रहे हैं उसकी मानसिकता। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम तो इस पर कहीं नहीं थे, वंदे मातरम के निर्माण में कहीं नहीं थे। तो मैं पूछ रहा हूं खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? और आज मैं आपके सामने कुछ सीरीज ऑफ इनके आचरण को रखना चाहता हूं। 3 तलाक का विरोध, शाहबानो का विरोध, अभी जनगणमन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट। तो राष्ट्रहित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती। जरा स्वरों को बोलो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे लगा कि एक इस विषय को पुनः स्मरण ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फिर बताया जाए, सुनाया जाए और देश को समझाया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी अपने ही वसूलों से भाग रही है। आज मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। यह भारत का ओरिजिनल संविधान, यह बड़ी कॉपी है इसकी, जब मैं कानून मंत्री था तो इसकी मैंने छोटी छपवाई और देश भर में बटा भेजा था। इस संविधान सभा में खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मेंबर थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया बंगाल की घटनाओं को लेकर। मिस्टर खड़गे आपसे मुझे एक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी मुझे आपसे एक सवाल पूछता है, इसमें कई चित्र हैं। देखिए फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है, प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय करके अयोध्या लौट रहे, ठीक है। और ये सब चित्र क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। अब आप देखिए बस एक मिनट बता दीजिए, वेर इज कृष्णा, निकालिए उसको, कृष्ण जी वाला निकाल दीजिए, कृष्ण जी का गणेश जी का सब निकालिए बराबर। जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक चर्चा हुई कि हजारों वर्ष के बाद भारत आजाद हो रहा है तो क्या संविधान कैसे ही प्रस्तुत कर दे। तब सबों ने तय किया नहीं, हम ओरिजिनल संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की, भारत के संस्कार के, भारत की सभ्यता के प्रतीकों को प्रस्तुत करेंगे। और वो कौन प्रतीक होंगे उन लोगों ने तय किया। ये देखिए द ट्रिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत पे गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये देखिए ब्रह्म जी निकालो, नटराज निकालो और हनुमान जी निकालो, इनको चिंते हैं है?
4: जी
3: चिंते हैं इनको, हनुमान जी है ना, गुप्ता पीरियड के हनुमान जी, देख लीजिए आप। अगर नटराज निकाल दो खाली, बाकी इसमें वैदिक पूरा है, इसमें शिवाजी हैं, गोविंद गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, बाबर और औरंगजेब नहीं है, ध्यान रखिए आप। ये देखिए नटराज, खड़गे साहब आप संविधान संविधान की दुहाई देते हैं तो मूल संविधान में भगवान राम, प्रभु कृष्ण, महादेव नहीं, ये आपके नटराज और भगवान हनुमान की तस्वीर मैंने दिखा दी आपके सामने, तो इनके बारे में क्या कहना है आपको? ये धार्मिक आस्था का अपमान है क्या? क्या मतलब है इसका? इस देश को कहां ले जाएंगे मिस्टर खड़गे आप? बाकी पार्टियां छोटी करती है तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप बड़े गर्व से कहते हैं कि वी हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ऑफ योर ओन पार्टी। अपनी सारी पार्टी के सारे उन आदर्शों को भूल रहे हैं जो आजादी के आंदोलन में था। आप न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद रखते हैं, न लोकमान्य तिलक को याद रखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं, न आपके जिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीधा दिखा दिया कि उनका प्रस्ताव था, तो सब भूल जाएंगे आप। तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। अच्छा है अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नादानी और वोट बैंक की उत्कंठ इच्छा के कारण देश के सामने अपने को और एक्सपोज करने में लगी हुई है तो हम और एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके हित क्या हैं, और आजादी के आंदोलन की दावेदारी करने का नाटक करना बंद करें। मित्रों एक और विषय मुझे हल्के से कहना था, यही मेन विषय था, आपके सवाल होंगे। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल में किसी का नाम लिया था क्या? किसी का नाम लिया क्या? उन्होंने छोटी सी बात कही ना कि दिमागी नक्सलियों से भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप याद करिए कि जब अमित शाह जी ने संकल्प किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे, तो आज समाप्त हो गया कि नहीं मुझे बताइए आप। बस्तर में, सुकना में, महाराष्ट्र में आज माओवाद समाप्त हो गया कि नहीं? आपने टीवी पर दिखाया, आप सबको धन्यवाद कि किस तरह से वही बेटियां जो पहले बंदूक उठाती थी आज वो खादी के कपड़े पहन के फैशन परेड में भाग ले रही हैं, ये देखा ना आपने। लेकिन उनका इशारा क्या था? जो लोग माओवाद को बौद्धिक खाद देते हैं उनके पक्ष में लेख लिखते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, का देश को उनसे भी सावधान रहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पार्टी की ओर से, हम रचनात्मक सार्थक आलोचना का पूरा सम्मान करते हैं, लोकतंत्र है, आपको आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन नक्सलवाद का मूल मंत्र क्या है? सत्ता बंदूक की नली की गोली से आती है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, मारते भी हैं। यही चिदंबरम साहब थे ना गृह मंत्री, तो पता नहीं याद नहीं, मैं भी गया था छत्तीसगढ़ में, कितने लोग मिश्री शुक्ला भी मारे गए थे और काफी लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी घटना हुई थी। उनका स्टेटमेंट क्या था? देर आर इंटेलेक्चुअल स्पेसेस सपोर्टिंग माओइज्म, वो हिंदू में छपा है, पहली बार मैं आपको दे दूंगा, और बाद में तो जो है सो ही है, आता रहता है।
1: All right, that of course was BJP's Ravishankar Prasad coming out with that strong statement saying that with regard to the Vande Mataram row, the Congress party now insulting the national song, even though it was part of the freedom struggle. In fact, the Vande Mataram controversy is only escalating. Let's play out some of those important sound bites for you.
4: Yaad kariye, 1896 mein Congress ne Vande Mataram pehli baar gaya tha. 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, कांग्रेस ने उसी को, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था। और क्या मैं किरेन रिजिजू जी से पूछ सकता हूँ उन्होंने पहली बार वंदे मातरम प्रस्ताव कब पारित किया? इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी बंद कीजिए, इससे आपके आका आपको खुश होकर और प्रमोशन नहीं देने वाले।
5: क्या है तो अभी तक तो दो ही स्टैंड में होता था, बोला है हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने, और ऑलरेडी वंदे मातरम दो ही स्टैंड में होता है, उसी आधार पर होगा। जो प्रधानमंत्री ने लाल किले में भाषण दिया, वो भाषण देश के लिए था कि देश के इस सरकार का विरोध करने वालों के लिए था?
6: वंदे मातरम को लेकर क्या विवाद चल रहा है? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष है जयराम रमेश जी ने, उन्होंने औपचारिक बयान देने के बाद ये किसी तरह से कोई विवाद बनता नहीं है। आज वंदे मातरम की बात जो करते हैं, कभी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए या गीत अपने जबान से गाते हुए कभी उन्होंने अपनी शहादत दिया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवाद की बात तो जरूर करता है, लेकिन राष्ट्र में लोगों में दरार पैदा करने का काम करता है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम करता है, द्वेष पैदा करने का काम करता है, ये कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता।
7: Well, you know, the Congress party has put its petty politics ahead of nationalism. Do understand that the Home Ministry has issued an order stating that all six stanzas of the national song should be included on all special and official occasions. This is not just about anywhere, everywhere. This is only on special and, official functions. So I don't understand why the Congress party chooses to disrespect time to time. They have disrespected Vande Mataram during the Independence Day celebration and they continue to do so in Goa. Mr. Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi need

0: how is it that such embezzlement actually took place and those potential financial irregularities came to light. The probe had raised allegations ranging from both donation embezzlement to the theft of devotees' offerings. Remember, there were reports coming in about how people had donated gold, silver, and those jewels were in fact missing. Questions regarding counting process, recovery of cash, and oversight of donations were all put forth during the SIT probe, and there were also questions surrounding the alleged recovery of 58 lakh rupees and missing funds that were given via donation. But the SIT has found no wrongdoing on the part of either Champat Rai or Anil Mishra. The final report submitted to the government has now been handed over to the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust for further action. It looks like maybe it'll be the new CEO who will then be making some important decisions on the basis of that probe. Turning attention from Uttar Pradesh to Jharkhand, where there was a big relief that came late last night for students in Jharkhand after the Hemant Soren government finally agreed to their one basic demand: cancellation of the two sets of examinations, the JSSC, which basically is recruitment examination for clerk level entry and clerk level appointments by the government, and JPSC, which is your officer grade appointment through the recruitment examinations. The decision comes after 24 days of protests, mounting pressure, and students saying that they will continue their hunger strike. Chief Minister Soren has said that a comprehensive inquiry will now be conducted into those massive irregularities, which essentially stem from that blacklisted company TDPL, which had an end-to-end contract for conducting these examinations. All eyes now on how soon will examination reform actually take place in Jharkhand.
1: इस विषय को लेकर हमने जो SIT की टीम जांच कर रही है और CID की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, CID को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए।
2: सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मान्य शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो विलेखित के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो।
3: हमसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन
4: भाई वांचो को दिखाई दे
3: डिमांड पूरी कर दी है सरकार।
5: अब जो है सर आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
6: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
7: ये झारखंड के बच्चों की जीत है,
6: ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
7: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है,
8: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
9: बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा, और इतने मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई।
8: देर से ही सही, लेकिन सरकार ने डिसीजन छात्र हित में ली है, सरकार को धन्यवाद, लेकिन अभी एक कदम और बढ़ करके सरकार को आगे आने की जरूरत है, CBI जांच, दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए।
10: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
11: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका आमरण अनशन खत्म कराने आए थे, आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ 6 अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने आमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
12: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, CGL जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
13: अब झारखंड सरकार को ये निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा? दिल्ली में आंदोलन शुरू होते ही सरकार ने वार्तालाप शुरू किया था, मंत्री लोग जाके मिले, बार बार चर्चा हुई, आंदोलनकारी नहीं मान रहे थे, यहाँ की विद्यार्थी जो आंदोलन कर डिमांड रखे थे उस पर सोचने के लिए तैयार नहीं था सरकार, और पहले बातचीत करके कर लेते तो इतना समस्या नहीं होता। इस प्रकार बड़ा आंदोलन चलता है तो समस्या सबको होता है, बच्चे बीमार हो गए, उनका ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्यों ये सब ड्रामा करे? सरकार का कॉन्फिडेंस कम है क्या? अच्छा है, उन्होंने जो वचन दिया उसको निभाए, विद्यार्थियों की उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो तो आंदोलन करेंगे।
14: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए, वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें, और मैं ये स्पष्ट मानता हूँ कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
0: All right, an update in the Tushar Sharma death case, where CBI is chilling charge sheet in Tushar's death case comes out with some very chilling and disturbing details. Trisha's final message to her co-sister paints a chilling picture of her state of mind. In fact, 90 minutes before she took her life, Trisha wrote, "Let me die in peace right now," to her co-sister and asked her to tell someone to collect her belongings the very next day. Minutes later, that CCTV video that captured Trisha Sharma walking alone towards the terrace came out. The CBI charge sheet now claims that Trisha Sharma sustained mental harassment after marriage, including abortion-related pressure, humiliation, and emotional abuse along with character assassination. It also says that Trisha was repeatedly called a murderer with regard to the abortion. The CBI further says that Trisha Sharma told her mother that it was her husband. In fact, her husband had become both aggressive and violent, and that she was actually very scared. Those are some of the details that have come to light from the CBI charge sheet in the Trisha Sharma case. Remains to be seen what happens next in the ongoing case. And on that note, a quick break. We return with more stories on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू।
2: A very good afternoon to all our viewers. Thanks for tuning into NDTV. This is the Southern View for the next half hour. All the stories that matter from the south of India. Joining me on this broadcast, Vijay from Tamil Nadu, Ritu, my colleague, joins me from Bengaluru. We also will be joined in by Ashish from Hyderabad and Ashwin from Kerala. First up, there's news coming in from Tamil Nadu. I'm going to toss over straight to Vijay, who takes us through the developments there. Vijay.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनका परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे उनको भरोसा नहीं है, इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउएवर कमिंग अबाउट फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड विद हेमंत सोरेन गवर्नमेंट दैट हैज एटलीस्ट एग्रीड टू दोस डिमांड्स एंड कैंसल द जेएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। The discussion has, been going on now for days. There have been 16 days of that endless fast that's come to an end by Devendra Mahato. The decision that's come after those protests that and mounting pressure from students demanding action in this particular regard. Announcing the cabinet decision was the chief minister himself. He said that there was a comprehensive inquiry which will be conducted into all errors, minor and major, that have occurred ever since 2014 and all exams linked to the TDPL, including the JSSC, that will be cancelled and hailing the government. It was Mahato who went ahead and ended his fast that he'd been on fast, to remember, from the 2nd of August, and that marked 16 days of being on that endless fast. While he's been grateful to the students for their support and the government for accepting those demands, but he's gone ahead and said that all demands haven't been met, and which is why the protests will continue.
7: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन।
5: Breaking updates, Congress President Mallikarjun Kharge has hit back at the criticism over the Vande Mataram controversy. He has said what kind of complaint would they file, I sing the very same Vande Mataram that Mahatma Gandhi sang, I sing what Jawaharlal Nehru sang for 18 years. Central government, including Vajpayee, sang the exact same version and so did we. And for 12 years, they have sung the very same Vande Mataram all along. If this is a crime, then they have been committing a crime for 18 years. If this is a crime, then file a case against Gandhiji. If this is a crime, file one against Nehru. If this is a crime, file one against Vallabhbhai Patel. They are simply unaware of the facts, he says. Long before they were even born, the Congress had passed a resolution deciding which national song the country would adopt. What you say becomes national. Whatever you say becomes the rule. So therefore, Mallikarjun Kharge, they're attacking the center over the entire Vande Mataram controversy. Let's listen into what exactly Kharge has said.
8: Complaint, wo kya file karenge? Jo Mahatma Gandhi ji Vande Mataram gaye the, wohi mein gaya. Jo Jawaharlal Nehru gaye the, wohi gaya. Ab tak 18 saal tak unhone jo gaya hai, aaj unki central government, Vajpayee ne jo gaya, wohi gaya main. और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।
5: We have Tejshree joining us. Tejshree, Mallikarjun Kharge, they're maintaining that Congress has simply continued a practice followed for decades based on party's historical decision regarding a rendition of the national song. If you can take us through the details of what exactly Mallikarjun Kharge has said, how he has countered this particular Vande Mataram rendition controversy.
9: The entire controversy started from 15th of August, Independence Day, at a point of time when allegedly the Vande Mataram was being interrupted by Sonia Gandhi. And later on, in fact, on Monday, there were two stanzas of a Vande Mataram that was sung at a meeting of booth level agents and the Congress and Congress workers, and it was attended by the AICC President Mallikarjun Kharge. And then later on, in fact, we also saw that how multiple complaints have been lodged against the Congress party for not singing, reciting entire Vande Mataram, the national song, not reciting the all six stanzas. And here Mallikarjun Kharge, the party president, goes on to say that if I am wrong, then Mahatma Gandhi was also wrong and FIR should also be filed against him as well. FIR should also be filed against Nehru. FIR should be filed against Patel. And this is what we have been doing since 90 years. And now BJP, in fact, you know, molds the rules and laws according to their own terms and conditions. So now if they are filing FIR on me, if they are filing FIR on the Congress party and their leaders, then they should also keep in mind that it has been going on since 90 years. And will they be filing FIR cases, complaints against all those leaders who just sang two stanzas of Vande Mataram? Remember that BJP has been, you know, criticizing the disrespect of Vande Mataram, the national song as well. And you know, other members of the Congress party have been stating that it has been the ritual since long. So as far as Vande Mataram is concerned, that they have been just singing two stanzas, two paragraphs only. But as far as the BJP is concerned, BJP has been criticizing Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi during the song's rendition at Congress at a point of time when Independence Day celebration was going on, and later on here in Goa as well.
5: Tejshree, stay on with us. We also have KJ
10: Alphonse of Kerala BJP also joining us. Mr. Alphonse, you just heard what Mallikarjun Kharge had to say as far as this entire Vande Mataram controversy is concerned. He says that Congress has continued a practice for decades and this was based on party's historical decision regarding the rendition of the national song. And if they had to make a big deal or if they have to complain about it, then they have to make a big deal about it and complain against several of the past historical leaders.
11: You see, it was such a comic scene at the AICC headquarters on the Independence Day. I mean, they had no clue what to do. And look at the way Sonia Gandhi was reacting. I mean, it was absolute comedy. Halfway through, she was running around saying, stop, stop. Then I think I read some statement where she said, no, I was just looking for a chair for Kharge to sit down because he was getting tired. I mean, make up your mind, Congress party. What exactly is your problem? Now, here is a national song which is part of history. Now, you guys cut it down to two paragraphs and we said, looking at the historic history of the Vande Mataram, we need to sing all the four. And the government, the Home Ministry has issued an order saying, well, we need to sing it, all the four stanzas. Now, take again the national anthem. You can say, well, national anthem, we don't agree with the national anthem and therefore we don't want to sing it. In fact, I asked district collector, asked Secretary of Education, had issued an order that all school students should sing national anthem. This is when I was Secretary of Education Kerala and some students belonging to a sect called Jehovah's Witness refused to sing it. Of course, the High Court upheld my order. Supreme Court eventually struck it down saying that, no, you have a freedom of expression. You need to stand with respect. You don't necessarily need to sing it. But I think it was a very perverse order. Now, the government of India has decided that, you know, this is a national song. And going by the history of it, we have four stanzas. We should sing all of them. Okay, you may have your disagreements. Nobody is asking you to sing it if you don't want to, but at least stand with respect. Not the kind of comedy which was demonstrated, the ugly comedy which was demonstrated at the AICC. You believe people have no clue what is a nation, what is it to respect a nation. Okay, you don't necessarily have to love if you don't like it, but at least respect the national sentiments, the national song.
10: All right. Thank you, Alphonse, for joining us. Sir, you're saying that show respect. However, Mallikarjun Kharge, they're maintaining that they have simply continued what has been practiced for 90 years. Of course, we'll track the story closely. Another Vande Mataram controversy now erupting within the Congress with the BJP accusing the party of insulting the national song yet again at Mallikarjun Kharge's event in Goa. Vande Mataram was stopped after just two stanzas with Kharge seen sitting down. This comes days after Sonia Gandhi was seen asking for the song to be cut short at Congress headquarters on Independence Day. BJP is now alleging a pattern targeting Sonia, Rahul Gandhi and the wider Congress over what is what it calls repeated disrespect towards patriotism. Vande Mataram was recently given national anthem stature by a law passed in Parliament. We have reactions and statements coming in. Take a look.
12: Yaad kariye, 1896 mein Congress ne Vande Mataram pehli baar gaya tha. 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे कांग्रेस ने उसी को बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था. और क्या मैं किरण रिजिजू जी से पूछ सकता हूँ उन्होंने पहली बार वंदे मातरम प्रस्ताव कब पारित किया? इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी बंद कीजिए, इससे आपके आका आपको खुश होकर और प्रमोशन नहीं देने वाले.
13: कल खरगे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में दो स्टांजा ही गाया गया. आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं. कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे. इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यू बेटर स्टॉप क्लेमिंग मोनोपोली एज द कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट।
14: क्या है तो वो अभी तक तो दो ही स्टैंड में होता था, तो बोला है हमारे कांग्रेस पार्टी क्या है कमांड ने, और ऑलरेडी वंदे मातरम दो ही स्टैंड में होता है, उसी आधार पे होगा। जो प्रधानमंत्री ने लाल किले में भाषण दिया वो भाषण देश के लिए था कि देश के

0: संघ राष्ट्रवाद की बात तो जरूर करता है, लेकिन राष्ट्र में लोगों में दरार पैदा करने का काम करता है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम करता है, द्वेष पैदा करने का काम करता है। ये कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता।
1: ये लोग आज वंदे मातरम की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि नौजवान के हाथ को जो काम चाहिए, रोजगार, वो आप दे नहीं पाए पिछले 12-13 साल से। स्टूडेंट सही से एग्ज़ाम करवाने की मांग रहा है, जो एक किसान है वो अपना हक मांग रहा है, जो उद्योगपति को आप पैसे वाले को और पैसा बना रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं, गरीब अपना हक मांग रहा है। ये सब बातों को आप छुपाकर इससे ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। जब अंग्रेज़ के सामने वंदे मातरम की बात करनी चाहिए थी तब आप कहाँ थे, आपके पूर्वज कहाँ थे? आप तो अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर रहे थे, आज हमें सिखाएंगे क्या?
2: Well, you know, the Congress Party has put its petty politics ahead of nationalism. Do understand that the Home Ministry has issued an order stating that all 6 stanzas of the national song should be included on all special and official occasions. This is not just about anywhere, everywhere. This is only on special and official functions. So I don't understand why the Congress Party chooses to disrespect time to time. They have disrespected Vande Mataram during the Independence Day celebration, and they continue to do so in Goa. Mr. Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi need to apologize to the nation and then fought for our national song and our national anthem both. So the Congress Party plays this petty politics.
3: Shifting focus to Maharashtra now, Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik has issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says drivers will first get a 1-month notice followed by a 3-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says creating a Hindi-Marathi dispute is not right, and while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
4: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
5: लगत आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नाही आहे. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है, लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
6: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरी जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
3: And to get a sense of pulse on ground, our correspondent Prajakta Pol spoke to some taxi drivers in Mumbai to understand their views on this decision. Take a look at
7: Maharashtra government has made compulsory to auto rickshaw and taxi drivers to speak Marathi. 17 August deadline has passed. Now government will start taking action against auto rickshaw and taxi drivers who cannot speak Marathi. We are here to talk to some taxi drivers. Aap bataiye aap

0: कहाँ से है?
1: मैं यूपी से हूँ।
0: आपको आती है मराठी?
1: मराठी आती है लेकिन फुल पूरा नहीं आता है, और सामने वाला बोलेगा तो अपने को पूरा समझ में आता है।
0: वो जो भी अभी गवर्नमेंट ने जो आपको दिया था ये फैसला कि आपने एग्ज़ाम दी थी, आपने
1: एग्ज़ाम का भीड़ बहुत था, अभी जो एक महीने का टाइम बढ़ाया गया है, अभी एक महीने का सरकार ने टाइम दिया है, उस पीरियड के अंदर हम लोग करने वाले हैं।
0: तो मतलब आपको अगर पैसेंजर आते हैं तो कितना मतलब क्या क्या आप बोल सकते हो?
1: पैसेंजर आए गए किधर जाना बोलेंगे तो वो अपने को समझ में आता है, मीटर से बोलेंगे तो वो अपने को समझ, सब मतलब मेन पॉइंट अपने को समझ में आ रहा है।
0: That they are saying that they have given an exam, but we can speak Marathi. So here is a taxi stand, and we will try to speak some more taxi drivers. आपको आती है मराठी? आपने सीखी?
2: हाँ सीखी मैडम, आती थोड़ा बड़ा आती है।
0: तो क्या क्या आता है आपको? अभी गवर्नमेंट का ये जो फैसला है आपको मतलब पूरा अभी सीखना है या पूरा आपने एग्ज़ाम दिया सर्टिफिकेट मिला?
2: नहीं मैडम, अभी तो केवल सीख रहे हैं जाके।
0: तो अभी कल से तो एक्शन शुरू होगा, तो क्या करेंगे?
2: तो मैडम सर्टिफिकेट का इंतजार है।
0: कहाँ से है आप?
2: मैं यूपी से, जौनपुर।
0: आप कहाँ से हो?
3: यूपी।
0: आपको आती है मराठी?
3: थोड़ा बहुत।
0: क्या क्या आता है?
3: ऐसे ही थोड़ा बहुत, समझने को तो सभी समझ लेते हैं लेकिन बोलने को थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल होता नहीं मैम, लेकिन अभी क्या है जो आ गया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, लेकिन उसको फॉलो करना ही पड़ेगा।
4: All right, so those are the reactions coming in from several of the rickshaw and taxi drivers in the city of Mumbai. Of course, several of them still learning Marathi. They are not fluent with the language, and considering most people, especially in the city of Mumbai, know Hindi, it is not necessary, is something that several of these drivers feel. In fact, at this point, we know for a fact that Maharashtra Transport Minister has issued a warning to these drivers, rickshaw as well as taxi drivers, who fail to learn Marathi. They will get a 1-month notice followed by a 3-month suspension, and non-compliance could lead to permanent license cancellation. Many would say this is stringent and this is unnecessary, a very controversial order, so to speak. Government now enforcing the requirement for functional Marathi knowledge among several of the vehicle drivers, but several are opposed to it. Union Minister Ramdas Athawale opposing this action. He says creating a Hindi-Marathi dispute is not right, and drivers must learn Marathi, but they should not be punished simply for not knowing the language. So that's the latest we are picking up as far as the Marathi diktat in the state of Maharashtra is concerned. All right, with that, we'll slip into a short break. We have more news and updates coming up on the other side. Don't go anywhere.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स।

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम जी में

0: from a union minister. Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
1: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 165,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
2: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात तो सही है, लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी तो सीख भी रहे है, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
3: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रिवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए.
0: All right, so learn Marathi diktat. They're coming from a state minister criticized by a union minister. To get a sense of the pulse on the ground, NDTV's Prajakta spoke to some taxi drivers in Mumbai to understand their views on this decision.
4: Maharashtra government has made compulsory to auto rickshaw and taxi drivers to speak Marathi. 17 August deadline has passed. Now government will start taking action against auto rickshaw and taxi drivers who cannot speak Marathi. We are here to speak to talk to some taxi drivers. Aap bataiye, aap kahan se hai?
5: Main UP se hu.
4: Aapko aati hai Marathi?
5: Marathi aati hai lekin full pura nahi aata hai. Aur samne wale bolega to apne ko pura samajh mein aata hai.
4: वो जो भी अभी गवर्नमेंट ने जो आपको दिया था ये फैसला कि आपने एग्ज़ाम दी थी, आपने
5: एग्ज़ाम का भीड़ बहुत था, अभी जो एक महीने का टाइम बढ़ाया गया है, अभी एक महीने का सरकार ने टाइम दिया है, उस पीरियड के अंदर हम लोग करने वाले हैं.
4: तो मतलब आपको अगर पैसेंजर आते हैं तो कितना मतलब क्या क्या आप बोल सकते हो?
5: पैसेंजर आए गए किधर जाना बोलेंगे तो वो अपने को समझ में आता है, मीटर से बोलेंगे तो वो अपने को समझ, सब मतलब मेन पॉइंट अपने को समझ में आ रहा है.
4: दैट दे आर सेइंग दैट दे हैव गिवन एन एग्जाम बट वी कैन स्पीक मराठी, सो हियर इज अ टैक्सी स्टैंड एंड वी विल ट्राई टू स्पीक सम मोर टैक्सी ड्राइवर्स. आपको आती है मराठी, आपने सीखी?
6: हाँ सीखी मैडम, आती थोड़ा बड़ा आती है.
4: तो क्या क्या आता है आपको अभी गवर्नमेंट का ये जो फैसला है, आपको मतलब पूरा अभी सीखना है या पूरा आपने एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट मिला?
6: नहीं मैडम, अभी तो केवल सीख रहे हैं जाके.
4: तो अभी कल से तो एक्शन शुरू होगा, तो क्या करेंगे?
6: तो मैडम सर्टिफिकेट का इंतजार है.
4: कहाँ से है आप?
6: मैं यूपी से, जौनपुर.
4: आप कहाँ से हो?
7: यूपी.
4: आपको आती है मराठी?
7: थोड़ा बहुत.
4: क्या क्या आता है?
7: ऐसे ही थोड़ा बहुत, समझने को तो सभी समझ लेते हैं लेकिन बोलने को थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे. ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल होता नहीं मैम, लेकिन अभी क्या है जो आ गया है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा. हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, लेकिन उसको फॉलो करना ही पड़ेगा.
0: All right, let's shift focus now to Uttar Pradesh and the latest in the Ram Mandir Chanda Chori case and the investigations into it. Now, the SIT's final report into the alleged Ram Mandir donation theft is now out, and it gives a clean chit to the former Trust General Secretary Champat Rai, somebody who stepped down after this scandal, and also to former Trust member Anil Mishra. The The probe had raised allegations ranging from

0: फैसला आया 17 अगस्त को, और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, JSSC CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है, और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के मित्रों को, मेडिकल टीम को मैं धन्यवाद देता हूं।
1: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
2: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
3: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
4: जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
5: Let's now get you the latest in the Twisha death probe and the CBI's chilling charge sheet in the Twisha Sharma death case. Twisha's final message to her co-sister paints a chilling picture of her state of mind 90 minutes before she died by suicide, and that is something that has been confirmed now by the CBI charge sheet. Twisha wrote, "Let me die in peace right now," to her co-sister and asked her to tell someone to collect her belongings the next day. Minutes later, the CCTV then captured Twisha walking alone towards the terrace. The message has now emerged as a key piece of evidence in the CBI's investigation into the alleged mental cruelty faced by Twisha at the hands of her husband, Samarth Singh, and mother-in-law, Giribala Singh, a former judge. The CBI charge sheet claims that Twisha sustained mental harassment after marriage, including abortion-related pressure, humiliation, emotional abuse, and character assassination. It also says that Twisha was repeatedly called a murderer over her abortion. The CBI further says Twisha told her mother that her husband had become aggressive and violent and that she was scared. Twisha Sharma, a 33-year-old model and actress, had met Samarth Singh through a dating app in 2024. The couple married in December 2025, and then in May, on May 12th, in fact, Twisha was found hanging at her marital home in Bhopal. Extremely tragic case there. With that, we'll slip into a short break. News and updates continue on the other side. Stay with us.

0: NDTV might have failed. There are just very few which can help it succeed. The question is, can you find the levers? Can you do what is required to be done in this age of AI, in the kind of fragmented attention reality spans that we're seeing, to ensure that it stays credible, it stays relevant, and it grows? That is the challenge. I think it's a huge professional challenge, and I'm very grateful to the management of the Anani Group for thinking me worthy of this opportunity, for giving me this chance to go out and build this new NDTV. And we've just started, so it'll take some more time, and I think the results will speak for themselves.
1: सबसे पहले आपले सहर्ष स्वागत आहे.
0: बहुत-बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.
1: दूसरा मेरा पहला सवाल हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि जैसे किसी कॉरपोरेट समूह का कोई न्यूज चैनल होता है, उसमें सवाल उठते हैं कि क्या एडिटोरियल स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं मिलेगी. बहुत सारे सवाल उठते हैं. एज ए एडिटर इन चीफ, आप इस स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करते हैं?
0: पंकज, पहली बात तो यह है कि लोगों के जहन में शक होना लाजमी है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि मैं कुछ कहूँ, उससे ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखें, हमारे डिजिटल सोशल यूट्यूब फीड को देखें, और अपना मन खुद बनाएं. आप यहाँ पर बैठ के अपनी निष्पक्षता का ऐलान करते रहें कि आप बहुत सच्चे हैं, बहुत बेखौफ हैं, उसको कोई मानेगा नहीं. लोग चैनल लगाएंगे, यूट्यूब देखेंगे, सोशल पे देखेंगे, डिजिटल पे देखेंगे, इंस्टा पे देखेंगे, और अपना मन खुद बनाएंगे. अगर आपकी संस्थान में खबरों को दिखाने की सच्चाई है, अगर आपके पत्रकारों में नैतिकता है, अगर वो ढंग से सवाल पूछते हैं, बेखौफ होके नेताओं से, मंत्रियों से, कॉर्पोरेट से सवाल करते हैं, तब तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको पहचानेंगे. और अगर आपकी खबरों में धार नहीं है, अगर फीकी, अधूरी, डरी हुई खबरें आप दिखा रहे हैं, तो लोग उसको बहुत जल्दी देख लेंगे. बीते ही एक साल में पंकज, आप यूट्यूब लीजिए, डिजिटल लीजिए या सोशल लीजिए, इंटरनेट लीजिए, एनडीटीवी हर पैमाने पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. यूट्यूब में पहले चैनल की रैंकिंग 12 हुआ करती थी, अब या तो एक है या दो है, नंबर वन या नंबर टू, महीने दर महीने आ रहा है. इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे, टीवी में भी हर हफ्ते हम लोगों की रेटिंग्स बढ़ रही थी. अब तो कई हफ्तों से रेटिंग आ नहीं रही, लेकिन उससे पहले लगातार इजाफा हो रहा था. तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं लोग हैं जिनको आपकी पत्रकारिता अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आपकी जर्नलिज्म उनसे कनेक्ट करी, इसीलिए वो देख रहे हैं. अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता. आप किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते. आप कभी भी कुछ आप बहुत होशियारी से बोल दो और मान लो कि लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता. अगर वो खबर देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ढंग से कर रहा है, तो उसको मानेंगे. अगर उनको लग रहा है कि ढंग से नहीं कर रहा, उसको कभी नहीं मानेंगे. तो मुझे लगता है कि जनता जैसे वोट देती है, वैसे उस तरीके से अगर वो आपको वोट देगी, आपकी पत्रकारिता वोट देगी तो देखेंगे, नहीं देगी तो नहीं देखेंगे. और मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करना, सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से खबरें दिखाना, बिना डरे खबरें दिखाना. और अगर हमारी ईमानदारी लोगों को अच्छी लगेगी तो खबरें देखेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं देखेंगे.
2: Talking about editorial integrity, now, you know, NDTV was forever considered as that last bastion of independent journalism. Is it still a people's channel? And the case in point is when the NEET protest happened, nationwide protest there, a lot of the student population, they alleged that the mainstream media, including NDTV, showed more of the political angles and demanding accountability from the government or showing students' demands. What is your response to that criticism?
0: Neeta, NDTV was arguably the only mainstream media organization which had a battery of its top anchors, editors, reporters deployed at Jantar Mantar covering that protest non-stop. You know, our managing editor Shiv Arur went there, Padmaja Joshi was there, Sucharita Kukreti, Sohail from our Hindi channel, Ankit Tyagi was there, like the entire galaxy. Vishnu Shom was there day after day. So the entire galaxy of NDTV talent was out on the ground covering that protest. It is but natural that protesters will have concerns, and those are legitimate. Mainstream media hasn't done a fantastic job of conducting itself, and that is the reality. You can't run away from that. If you call the students goons, etc., then obviously people out in the streets won't like you. But I was determined to ensure that we were out in the streets with the protesters, listening to their voice, ensuring that their voice is heard and amplified to our audience. Whether we did this well enough, did we do enough, could we have done more, those are legitimate questions. You can't run away from them. But it's not as if we were trying to vilify the protesters or demonize them or just try and find fault with them. There were also certain anti-social elements who had crept in and were antagonizing the police. That is also a reality. Some of that data has come out as well. I think that's as much a part of the story. You carry the voice of the protesters. You also show if the protesters or some protesters attack the police. I think this is what journalism is. It's not about picking a side. It's not about whether you're left or right, whether you tom-tom just what the government says or blindly believe everything the students say. I think the whole job of journalism is to look at what's being said, applying your own brain, looking at the story as it is before your eyes and reporting both sides of it, which is what we tried to do as best as we could. And that's what we'll do in every such opportunity that comes along.
1: यस नीता जी के सवाल से जुड़ा ही मेरा एक छोटा सा सवाल है. जैसे अभी हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, नीट का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, तो तमाम लोगों का कहना है कि मीडिया ध्रुवीकरण में बंद गई है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और विश्वसनीयता खोई है, जैसा कि वहाँ पर तमाम रिपोर्टर्स के साथ हुआ. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता वास्तव में कम हुई है, और क्या इसको वापस पाने के लिए आपकी नज़र में क्या किस तरह से पाई जा सकती है?
0: पंकज, आपने मेरे काम को पिछले ढाई दशक से देखा है. मैं लेफ्ट या राइट पक्ष में या खिलाफ में इस तरह की पत्रकारिता में विश्वास ही नहीं करता. मेरे हिसाब से कि आपको सबकी सुननी चाहिए. सरकार का कोई कार्यक्रम होता है वहाँ जाते हैं, कांग्रेस या विपक्ष का कोई कार्यक्रम होता है वहाँ भी जाते हैं, उनको भी सुनते हैं, और मैं इसी तरह की पत्रकारिता में विश्वास रखता हूँ. तो ये कहना कि जनता के बीच में मेनस्ट्रीम मीडिया को लेकर सवाल हैं, एकदम हैं, वाजिब हैं, और मेरे में ही जहन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि हमारे कई सारे साथी हैं जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जो जब इस तरह के सवाल पूछते हैं, इतना डर के पूछते हैं, लेट पे किसी के चरणों पर लेट के पूछते हैं, उससे क्या ही कर रहे हैं यार, मतलब कैसे सोते होंगे रात को, मतलब ईमानदारी से करो, अपना काम करो, और नहीं कर पाए तो घर जाओ. मतलब कोई ऐसी मजबूरी तो है नहीं ना करने की. आपको जो करना है, जिस हद तक आप ईमानदारी से कर सकते हो, आपको करना चाहिए. नहीं कर पाए तो कुछ और कीजिए. ऐसे आपको किसी ने बांध के थोड़ी रखा हुआ है कि डर डर के आप सवाल पूछ रहे. भाई सर, जनता का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है सवालों के जवाब देना. वित्त मंत्री इस प्रोटेस्ट खत्म होने के अगले दिन NDTV प्रॉफिट के कार्यक्रम में आई थी, बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स मुंबई में ताज कुलावा में था, और हमने कई सारे सवाल पूछे कि क्या बहुत देरी कर दी सरकार ने स्टूडेंट्स से इंगेज करते हुए, पहले क्यों नहीं जगे, इतनी नाराज़गी स्टूडेंट्स में आई, आपको पता क्यों नहीं चला, पहले धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों नहीं जवाब दिया. वहाँ पे कई सारे औद्योगिक घरानों के लीडर्स थे, उन्होंने बोला अरे आप में बड़ी हिम्मत है, आपने किस तरह से ऐसे सवाल पूछे. मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, हिम्मत नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है, और जिस हद तक मैं कर सकता हूँ उसको मैं करूँगा, और इसमें मुझे कोई ब्रेवरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए. ये मेरा काम है, मैं अपना काम ठीक से करूँगा. मैं कोशिश करूँगा कि हमारी टीम में जितने भी एंकर्स हैं, संपादक हैं, रिपोर्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना काम अच्छे से करें, और हमारी उम्मीद है कि हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो सोच है, हमारा जो प्रयास है, वो जनता देखेगी, मानेगी. मेरे को जो चिंता है पंकज, वो ये कि जनता के बीच में कभी कभी वो मेनस्ट्रीम मीडिया को एक मोनोलिथ के तौर पर देखते हैं कि सारे चैनल एक जैसे हैं, या सारे नेता चोर हैं, या सारे पुलिस वाले चोर हैं, या सारे पत्रकार भी क्यों हैं. मेरे को लगता है वो गलत है. अगर आप देखो तो आप पाओगे कि अलग अलग शेड्स जिंदगी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे पत्रकार एक जैसे नहीं होते, सबका अपना सोचने का तरीका है, अपना काम करने का तरीका है. और मुझे लगता है जैसे आने वाले वक्त में NDTV और काम करेगा इस नए अवतार में, लोग जो हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं वो नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं उसको देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे.
3: सो रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज द टफेस्ट चैलेंज इन लीडिंग अ लेगेसी न्यूज ब्रांड अकॉर्डिंग टू यू?
0: द की इज रेलेवेंस एंड माइंड स्पेस. यू नो, एज वी लिव इन द अटेंशन इकोनॉमी वेयर अटेंशन स्पैन्स आर बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर, लाइक इंस्टाग्राम रील्स, how do you capture mind space and attention? And it is very easy to capture attention if you are in one corner. If you are extreme right, you call the students goons, there will be a certain population you appeal to. If you are fully on the side of the students and you think the government is the worst thing, it's the worst government in the world, it's the most horrible thing that's happened to India, if you project that image, as many people do, then again you'll have a very core constituency of loyal believers. How do you find space in the middle? I believe India's democracy thrives in the middle. This is where our democratic values live, they breathe. I think of NDTV as a big tent of ideas, of opinion, of shades. This is not one Moses leading the way and showing people the path. This is not about what I think. This is about different editors, different journalists, different shades of opinion. I don't have to agree with everything each one of our anchors or editors says. You have to give people shades of opinion. Pankaj may have a different take at Samachar for media on a story. Neeta may look at it differently.

0: Rohail may look at it differently. You have to be able to appreciate different points of view. You can't say, this is the only point of view. I know in some networks, that's how it works, that the editor-in-chief says, this is my line on the story and expects all reporters to follow exactly that line. I think that is wrong. I think that reporters need to report what they're seeing around them. It should not be dictated from somebody sitting in an AC studio dictating and determining what their reporters and anchors will say. And I think anchors and editors should be allowed to voice their own thoughts without being dictated by a central command. This is the line, this is the WhatsApp group, and now this is what you must say. I think that's wrong. That's not journalism. That's propaganda.
1: At the risk of making it sound like a monolith, the younger generation think that the traditional media has failed them and the independent digital platforms are the way forward. Now, in this case, also considering the kind of adoption digital has, you know, how everybody's flocking to digital, would you say your main priority and your main competition is battling with the digital platforms as opposed to your other contemporaries on TV?
0: Neeta, NDTV has been digital first long before I got here. Long before other newsrooms were even thinking of apps, this is the OG of India's digital ecosystem. They have one of India's best news apps, if not one of the world's best news apps. Their Google domain authority is very deep into the Google algorithm, which is why when you're looking for stories, you know, the first brand, the keyword that pops up is NDTV, which is nothing to do with us at this moment. This is the work that the fabulous battery of journalists, editors, producers over three decades have done. This is thanks to their effort. That this is India's digital OG. So other platforms are coming to terms with this digital reality now. NDTV was digital first. Even in terms of revenue, we make more money on the digital side than we do on television. And therefore, this is not something that scares us. NDTV is and has been forever digital first. It's a change we're embracing wholeheartedly. And ultimately, even on these digital platforms, people will go to handles or pages or channels that they connect with. Ultimately, when there's so much algorithmic pushes, do people trust your brand? NDTV Digital has amongst the highest percentages of people coming directly on the homepage.
1: Okay.
0: In the companies that I've known, just a very small fraction of your daily readership comes directly to the brand. Most of it came earlier through Google search and Discover. NDTV is the one Indian news organization which gets people directly on the homepage. That's the connect it has with its audiences. And we're trying to build on that. You're trying to build on that, you're trying to grow that, and that's the effort that's currently underway. So I think I'm hugely excited by the changes the digital frontiers present for news organizations. I know that there is a lot of upheaval at this moment. Many will potentially fall by the wayside, but I am quite certain that the one brand that will be standing once the ruins are being counted will be NDTV.
2: इन्हीं सब सवालों को आगे बढ़ाते हैं. आपने चैलेंज की बात की, आपने डिजिटल की बात की. अगर हम आपके 12-14 महीने का, शायद मेरे ख्याल से आपका 16 महीने का, तो इस जो कम समय में आपने क्या क्या चेंजेस किए जो आप आए तब से, उसके बाद आपने न्यूज़ रूम में क्या क्या चेंज किए, पहली बात. दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि जो चेंज किए वो सभी काम कर रहे हैं? बाकी आप क्या करने वाले हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस पर बात करते हैं.
0: सबसे पहले पंकज, हमने अपने कोर न्यूज़ को मजबूत करने की कोशिश की कि अगर आपकी न्यूज़ टीम्स हैं वो हिंदी में हो, अंग्रेज़ी में हो, बिजनेस में हो, रीजनल लैंग्वेजेस में हो, तो वो लगना चाहिए कि वो लड़ भिड़ रहे हैं न्यूज़ के लिए. ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूज़ ब्रेक हो रही है, ये लोग सो रहे हैं या वीकेंड मना रहे हैं, या फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि खबर आ रही है जा रही है, हम लोग हरकत में हैं कि नहीं. कि लगना चाहिए कि ये 24 घंटे का निरंतर लगातार ताबड़तोड़ न्यूज़ चैनल है. पहले वो एनर्जी और वो पैशन आपके न्यूज़ रूम में, आपकी स्क्रीन पर, आपके टिकर पर, आपके ट्विटर हैंडल पे, आपके इंस्टाग्राम पेज पर दिखना चाहिए कि ये न्यूज़ में. दूसरा ये कि आप ये नहीं मान सकते कि हम लोग रेस में हैं. क्या आप लोग रेस जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं? ये हमने जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहते थे कि हाँ, इंडियन टीम गई ओलंपिक्स में, हमने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है. मैं यहाँ पे ओलंपिक्स में हिस्सा लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ. और टीम में वो जज्बा हो कि हम लोग जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, हम जीतने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. तो पहले तो न्यूज़ को आप स्ट्रेंथन कीजिए कि आपके चैनल की कोई रेलेवेंस हो. ऐसा नहीं हो सकता कि NDTV क्या दिखा रहा है, इससे किसी की सेहत पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो है तो भी, नहीं है तो भी. मतलब कई सारे चैनल इतने रूखे सूखे से हैं कि वो दिखाएं, करें ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एनडीटीवी पे खबर चलती है तो व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली के हर गलियारे तक, चेन्नई से लेकर दुनिया में आप कोई भी हिस्सा ले लीजिए, वहाँ पे उसका असर है। ये मुझे पता है क्योंकि फ़ोन मुझे आता है कि खबर है, चैनल का इम्पैक्ट है, उसका रेलेवेंस है, ये बात है। तो पहली बात तो ये है कि ब्रांड का रेलेवेंस होना चाहिए, कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कोई विश्वसनीयता होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऑडियंस आपको देख रही है कि नहीं। एनडीटीवी में एक वक्त पे ये सोच थी कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा करते हैं, लोग हमें देखते नहीं हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये रेटिंग वेटिंग सब बर्बाद है, इससे कुछ होता नहीं है। और हम रेटिंग के पर, मैं ये नहीं मानता भाई, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं, वो इंस्टाग्राम पे हो, एक्स पे हो, लिंक्डइन पे हो, टीवी पे हो, यूट्यूब पे हो, तो आपको दिख ही रहा है ना। आप ही नहीं कह सकते ये मेरा वीडियो तो बेस्ट वीडियो था, इसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन मेरे सवाल इतने अच्छे थे कि उनको समझ नहीं आया। ये कोई मतलब नहीं, इस लॉजिक से मैं एग्री नहीं करता कि अगर आप कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो दूसरा हमने कोशिश की कि जो हमारा काम है जैसे यूट्यूब पे, सोशल पे, डिजिटल पे, क्योंकि पिछले कई सालों में कई सारी फाइनेंशियल दिक्कतें थी, कई सारे लीगल चैलेंजेस थे, तो जो प्रयोग बाकी कंपनियों में हुए वो इतना यहाँ पे नहीं हुए क्योंकि टीम बाकी चीज़ों में फंसी हुई थी। तो उन चीज़ों को हमने मजबूत करने की कोशिश की। और तीसरी कोशिश हमने की कि एक एनडीटीवी मल्टीवर्स बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ें, जिसमें लाइफलाइन जो कि हेल्थ केयर, एंटी एजिंग, वेलनेस, इससे जुड़ी हुई है, लॉन्च पैड जो कि करियर प्रोग्रेशन, अपस्किलिंग, इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है, एनडीटीवी गुड टाइम्स जो कि लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, फिल्म्स, लग्जरी, इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है, एनडीटीवी ऑटोमेट जो कि गाड़ियों के बारे में हम खबरें दिखाते हैं। तो इस तरह के कई सारे वर्टिकल्स पे हमने काम करना शुरू किया है। एक तरीके से जैसे आप मानिए कि अभी आप पौधा लगा रहे हैं, ये पेड़ बनेगा। जो हमने कोशिश की है पिछले 14 महीनों में वो ये है कि इस तरह के पौधे लगाए जाएँ जो कि एक मल्टीवर्स बने, कि आपका न्यूज़ है वो आपका कोर इंजन है, उस कोर इंजन के इर्द गिर्द आप अलग अलग नए पिलर्स बनाएं, वो पिलर्स आपके लिए कम्युनिटी बने, आपको अपने ऑडियंस से कनेक्ट करें, और साथ ही साथ उसी तरीके से आप एक नया एंटिटी भी बनाएं।
3: Raul, there's a perception, you know, when I interact with industry folks, they say that NDTV isn't making enough impact editorially. What would you say on that?
0: You know, people are entitled to think whatever they want. What somebody else working in some other newsroom thinks, frankly, is of no concern to me. What is far more important is whether those who are in the news ecosystem, those who we are reporting on, or more importantly, those who are watching us, whether they feel we are making an impact or not. When our teams were in Chennai covering the swearing-in of Vijay, or when we were in Bangalore when the leadership transition happened, there were dozens of people coming over to Shivarur, Veera Raga, Vasudha, Venu Gopal, saying, oh, we saw you on NDTV, can we get a photograph? That is impact. What those people think, that matters to me. What some person sitting in some newsroom thinks of us is inconsequential. That is real impact. I'd gone during the Bihar elections to, you know, these very impoverished parts of Bihar, beyond Purnia, Kishanganj. There people came up and said, अरे हमने आपका ये वाला इंटरव्यू एनडीटीवी इंडिया पे देखा था, अरे आप तो मखाना के खेत में कूद गए थे, दिस इज इन प्लेसेस लाइक किशनगंज एंड दिस इज एनडीटीवी इंडिया एंड वी जस्ट अबाउट स्टार्टेड एंड आई एम हार्डली इवन कमिंग ऑन एन एंकरिंग। दैट इज हाउ डीपली पेनिट्रेटेड द आइडिया ऑफ एनडीटीवी इज। दीज आर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल न्यूज ब्रांड, दीज आर फोर मैजिकल लेटर्स रोहेल, एनडीटीवी। What some jealous competitor sitting in a rival newsroom thinks of our editorial impact is completely inconsequential. Or those who matter, from the White House in Washington to Kartavya Bhavan in New Delhi, to the corridors of power in Chennai, Rajasthan, West Bengal, and to the streets, villages of India, what they think of our editorial impact, that is what I'm concerned about. Rivals are welcome to think whatever they want.
1: You know, connecting editorial impact to also revenue, I want to understand, you've announced a slate of new ventures, which is from auto, lifestyle, data-driven journalism, all of that. I want to understand, how are you prioritizing in such a way that you're not spreading out your resources too thin when there is revenue pressure already? And how will you make sure that your core journalism is not sacrificed when, you know, advance into all of these different platforms?
0: So the first thing that we're trying to do is strengthen the core of our journalism, invest in storytelling in Hindi, in English, on our regional channels, in business news. That is core and that is most important. That's what takes up the bulk of our resources, that takes up the bulk of our energy and effort, and that is more important than anything else. But given the fact that linear television is under pressure, and that is a headwind you can't deny. Mm-hmm. And given the fact that AI is eating up a lot of Google search and discover traffic, and that again is a reality that you can't deny, how do you build a sustainable

0: जी खास संस्थान से, खास विशेष नाम मैं नहीं लूंगा, वहां से इधर एनडीटीवी आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्या कुछ ऐसा है कि उनको एडवांटेज मिल रहा है, या अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह है?
1: जहां तक मुझे मालूम है, हमारे पास इस देश की हर संस्थान से कई सारे पत्रकारों ने ज्वाइन किया है, और अभी भी जहां से भी लोग आ रहे हैं, हम ये नहीं देखते उनके बायोडाटा में कि वो इस वक्त कहां पे काम कर रहे हैं
0: जी।
1: या वो किसी एक विशेष संस्थान में है या नहीं। हम उनका काम देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, हम उनके स्किल्स को प्रोफाइल करते हैं। और पंकज, मेरा ये सौभाग्य है और एनडीटीवी का सौभाग्य है कि इतने अच्छे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स ने ज्वाइन किया, क्योंकि एनडीटीवी कभी भी कोई एक शख्स नहीं बना सकता। अगर ये बनेगा, ब्रांड एक बार फिर से खड़ा होगा, तो इसमें अनेकों लोगों की मेहनत, उनकी लगन, उनका प्रयास जुड़ेगा। और हमने वही कोशिश की है कि जो भी कोई स्ट्रैटेजी में हो, रेवेन्यू में हो, सेल्स प्लानिंग में हो, कोई भी फंक्शन हो, एंकर हो, एडिटर हो, टीवी में हो, पीछे हो, हम बेस्ट आदमी को लें या बेस्ट महिला को लें, और एक इक्वल प्लेइंग फील्ड हो जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, क्या है, एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको इज्जत के भाव से ट्रीट किया जाए, सबको रिस्पेक्ट मिले, सबको प्रोफेशनली ग्रो करने का मौका मिले। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कामयाबी मिले ना मिले ये इतना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस रास्ते पे चले उस रास्ते में नेकी थी या नहीं, सच्चाई थी या नहीं, आपने अच्छे से काम किया नहीं, मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। कि जब आप सामने नहीं होते, आपके पीठ पीछे आपकी टीम क्या बोलती है, ये ज़्यादा अहम है। अगर आपके सामने, अगर आपके बॉस यहाँ पे खड़े हों, उनके सामने तो आप उनकी तारीफ करेंगे ही, लेकिन जब ये कैमरा बंद हो जाए, जब कोई है नहीं, तब आप उनके बारे में क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक ऐसी पूंजी है जो कि अमूल्य है, वो पूंजी सबसे ज़रूरी है। मेरे पिता पंकज ये कहा करते थे कि कामयाबी इससे सुनिश्चित नहीं होती कि आपने कितने लोगों का करियर बिगाड़ा, कामयाबी इससे तय होती है कि आपने कितने लोगों का करियर बनाया, कितने लोग आपको गुरु मानते हैं या आपके बारे में अच्छी चीज़ें कहते हैं या कहते हैं कि आपसे उन्होंने कुछ सीखा या जाना या देखा। वो एक ऐसी पूंजी है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, और वही मेरी ज़िंदगी की असली पूंजी है। वही पूंजी कमाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ।
2: सो राहुल, टेल मी, इज देयर एनीथिंग दैट बॉदर्स यू द मोस्ट? व्हाट इज दैट थिंग दैट bothers you as editor and CEO of NDTV the most?
1: I think the fact that AI is playing the kind of role that it is, Rohil, and that Google search and discover traffic is coming down almost week after week, not just month on month, is a huge concern for all digital news publishers. NDTV is luckier than most in the sense that we have a lot of direct traffic that comes straight to the page, whether it's our homepage or it's the app, and a lot of people come directly and engage with the website. But that's not something that we take for granted. The fact that there is a massive downturn in Google search traffic and Discover traffic, and that this is upending all notions of the digital business as we know it, that's of concern. So moving to build the kind of multiverse that I described earlier with speed and purpose, so that before you get to a Google Zero world, you've built out a multiverse which can sustain you. Because when algorithms decide where brands go or where news goes or where users go, the only thing a media organization has is trust. It has credibility. It has the belief of its consumers that bring those consumers back to the brand's homepage or app. That is all that you have. Building that is what is of immense importance to us. I know it's like time is running out. We're heading towards Google Zero. We're trying to rebuild all that we're trying to build. And we're trying to do it really quickly. So before we get to a Google Zero world, what have you got which can last in a Google Zero scenario?
0: Okay. एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की आपने बात करी, और अभी हम जो बात करेंगे AI की, तो मेरे दो सवाल आपस में जैसे मिले हुए हैं कि AI न्यूज रूम में लगातार चल रहा है, तो AI को लेकर NDTV क्या कर रहा है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चुनौती और बढ़ेगी? तो किस तरह से, ऐसा कोई है कि जो AI कर सकता है, मतलब जो आदमी कर सकता है वो AI नहीं कर पाएगा, एक तो ये, दूसरा, और ऐसे माहौल में जब AI बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ है, ट्रस्ट की आपने बात करी, तो कैसे मेंटेन रखेगा NDTV उसे?
1: NDTV में हम लोग बहुत AI यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़ प्रोसेसेस में, टेक्स्ट को ग्राफिक बनाने में, एडिटिंग में, आपके अलग अलग फॉर्मेट्स को रीपर्पस करने में। पहले बहुत सारा टाइम खराब होता था कि आप पहले वर्टिकल वीडियो बना रहे हो, अब आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो, तो कई सारी चीज़ों में आप AI के इस्तेमाल से काम को जल्दी कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड

0: just on TV, see us on Instagram, wherever, because when it really matters, India turns to NDTV. That's the idea.
1: Fantastic. Thank you so much, Rahul, for speaking to all of us and patiently answering all the questions.
0: Thank you very much.
2: Thank you,
0: Rahul.
2: Thank you so much.
3: बहुत-बहुत सादगी से और अच्छे से जवाब दिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बड़े टेढ़े सवाल पूछे.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्थर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: A world of questions, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
4: New rules of engagement, ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn. India is chasing years faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
4: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aar pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: Welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. And as always, when it really matters, the buck stops here. It's the national song, but it seems that even over this, we can't forge a national consensus, making many wonder, will it now be a case of your Vande Mataram versus my Vande Mataram? Will the national song now also be held hostage to political partisanship? Consider this. For the third time in the last week, the Congress has found itself under scrutiny over the national song. First, the BJP accused Sonia Gandhi of attempting to halt the singing of Vande Mataram midway during an Independence Day event at the Congress headquarters. Then it emerged that the Congress government in Kerala had done away with the national song altogether at all Independence Day functions in the state. And finally on Monday, Congress Chief Mallikarjun Kharge did sing the national song in a Congress event in Goa, but only the first two stanzas. Under attack, the Congress's argument is very simple. This is the national song that was adopted in 1937. This is the song that was sung by freedom fighters, by leaders of the Congress, and that is the way it should remain. The BJP, though, is questioning the hesitation and calling the attempt to avoid or truncate the song a sign of disdain and of disrespect.
1: Complaint, wo kya file kari? Jo Mahatma Gandhi ji वंदे मातरम गाए थे वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर।
2: अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था, उनका कितना 57-58 है कितना हा? ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो
3: क्या औकात है अटैक करने की? वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, ये थे तब दूम दबा के या तो गायब हो गए थे या दूम हिला के नरे वो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, ये बोलेंगे वंदे मातरम पे? औकात है इनकी, आ जाए सामने, डिबेट करें वंदे मातरम, हम बताते हैं इनको। तब वंदे मातरम इन्हें गाली लगती थी।
4: 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, कांग्रेस ने उसी को बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था।
5: कांग्रेस पार्टी के नेता, विशेष रूप से गांधी परिवार और गांधी परिवार की मिजाजपुर से करने वाले उनके सारे वरिष्ठ नेता, वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो देश की कानून और व्यवस्था से ऊपर है। ऐसे आप 1000 उदाहरण ढूंढ सकते हो।
6: एक इतना चिंता, इतनी नफरत, और वो भी कैमरा के लिए प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूंगी कि इस तरह से उनमें तड़पण होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि बीजेपी की बत्ती बनते अब देश।
0: So while the Congress talks about technicalities and history, making matters worse for them are leaders like their Member of Parliament, Imran Masood, who made the singing of Vande Mataram an issue about his faith.
7: जब वंदे मातरम को इनका विरोध था, वंदे मातरम बोल के लोग नारा दे के जेल में जाते थे, उस वक्त ये लोग भागते थे, इनका वंदे मातरम को विरोध था। और आज वंदे मातरम की बात करते हैं, वो पूरा वंदे मातरम वो जानबूझ के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं।
8: भैया आप पढ़ो ना,

0: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा, हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं।
1: And that brings us to the simple questions. Will the national song now be sung in its various versions? Why the discomfort with Vande Mataram in full? And is the national song being used to bait the opposition into a test of nationalism? And let me actually start by putting that question to Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP, and also somebody who has an additional responsibility. Congratulations, first of all, on that, Pradeep.
2: Thank you,
1: Bhandari. The Congress will say this was the version, and that's what Mr. Kharge said, that Jawaharlal Nehru sung this version, Rabindranath Tagore sung this version, Gandhiji sung this version. So why should the Congress sing any other version just because you insist?
2: We all follow the Constitution of India, and the Constitution of India tells us that any law which is passed by the Indian Parliament has to be followed by the citizens of the country, and every patriot does it who believes in the Constitution of India. Only those who are political fronts of the Dimagi Naxal ecosystem will not follow the law of the land. So A, this is the law of the land which is passed by the parliament. B, let me take the argument forward. If we extend this argument ki bhai musalman ke neta ko dikkat hai, hame dikkat hai, usko dikkat hai, with that same concept, Article 370 was abrogated by the parliament of the country. Earlier you used to have two flags, not just one national flag, and the Congress also opposed it. With the same premise, the Congress party even opposed CA. With the same premise, the Congress party has opposed various laws passed by the parliament of the country. And this is exactly the Dimagi Naxal ecosystem which the Prime Minister spoke about. But I'll make a very important point, and factual inaccuracies in Congress's argument. Factual inaccuracy number one, that A, is the Congress party indicating that every freedom fighter who sang Vande Mataram in entirety in 1905 was doing Hindu-Muslim? Point number one. Point number two, it was no other freedom fighter except Jawaharlal Nehru who succumbed to Muslim League's pressure in 1937. I have Nehru on record on 20th October 1937 saying that according to Nehru, it would irritate the Muslim League and Muslims. And with the same premise, you had the partition happening. So just because something has happened does not mean it is correct. And I'll tell you why am I saying. On the eve of independence, on 15th August 1947, on 6:30 a.m., on Akashwani radio, you have Sardar Patel requesting Pandit Omkarnath Tagore to recite the entire Vande Mataram. On 15th August, on his personal request, because Nehru had objected to it. So the essence of the Indian constitution always was the entire Vande Mataram, and more importantly, Padmaja, it's the law of the land which everybody has to apply to. If you do not do so, well fine, that exposes your Dimagi Naxal mindset and law will take it soon.
1: Okay, you brought in Dimagi Naxal also. I will put that question. I will put that question.
2: Will you follow the law of the land or not as a citizen of the country?
1: Okay, I will put that question to Hussain Dalwai and Vivek Bansal, both from the Congress, who are joining us in just a second. But I want to also bring in Sumitra Chatterjee, who is an MLA of the BJP, full disclosure, and a descendant of Bankim Chand Chatterjee himself. Mr. Chatterjee, you have written a very long letter to Mrs. Sonia Gandhi, but I want to point out some parts of what you have said. You have said ki aapke haav bhav dekh karke main atyant vyathit ho gaya aur ek gehri peeda shunyata aur shobh ke saath main ye patra likh raha hu. Now the thing is, the Congress is saying that Vande Mataram is being used to almost test their patriotism. हर चीज पे जो है आप उनका एक पेट्रियोटिज्म का टेस्ट करने लगते हैं कि अगर आपने ये नहीं गाया है तो दिस मीन्स दैट वी आर नॉट नेशनलिस्टिक, वी आर नॉट पेट्रियोटिक.
3: पॉइंट, बट द थिंग इज दैट वंदे मातरम एज पर ऋषि अरबिंदो, इट इज नॉट ओनली अ सॉन्ग, इट इज इट्स अ रिलीजन ऑफ पेट्रियोटिज्म. इफ कांग्रेस थिंक्स दैट दे आर अबव ऑल दीस, then I have nothing to say about the Congress, because Congress claims that they can have their abridged version of Vande Mataram, because they think that Vande Mataram is their own right. They can do whatever they want with Vande Mataram. I was shocked by their behavior, in spite of the law of the land says that while Vande Mataram is being sung, one has to give the respect as the national anthem is being given. So I wrote this letter to Madam Sonia Gandhi.
1: But what did you make of the entire episode that took place on the 15th of August? you know, was there hesitation? Was there discomfort? Because you've described it at length in your letter.
3: It was not hesitation. It was a purposeful act. It was purposely done just to show disrespect, just to show whatever BJP is doing, they are against it. Just to show that they are above all the laws, because Congress feels the Bharat is their fiefdom.
1: Okay, Bharat is their fiefdom. Let me put that question now to Hussain Dalvai of the Congress, who also joins us. Mr. Dalvai, BJP keh rahi hai ki aapko lagta hai, Congress ko lagta hai ki Bharat unka ek fiefdom hai, isiliye janbujhkar Vande Mataram ko disrespect kiya ja raha hai. Jab ek kanoon aa gaya hai, to kanoon ke tahat sare chhand gaye jane chahiye. All of them should be sung.
4: मेरे ख्याल से इसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत गैर समझ हैं. ऐसा है, ये बंकिम चंद्र जी ने जो आनंद मठ नाम की नावेल लिखी थी वो 1882 को प्रसिद्ध हो गई. 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वो गाया गया था, लेकिन उसमें रविंद्रनाथ जी ठाकुर साहब ने ये कहा था, ठाकुर साहब ने, कि इसके दो स्टांजाज ही गाइए. ये पहले मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, ये 6 स्टांजाज हैं, लेकिन 6 स्टांजाज में से 2 स्टांजाज संस्कृत में हैं. आगे के स्टांजाज जो हैं वो इसमें है, बंगाली में है, और 2 स्टांजाज ये सुजलाम सुफलाम, ये देश कैसा सुजलाम सुफलाम है, इसके बारे में संस्कृत में वो गाया गया है और वही अडॉप्ट किया गया था. ये देखिए, और 1950 में जब इसके बारे में इसमें बहस हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस वक्त वो 1950 में ये नेशनल सॉन्ग करके स्वीकारा गया, नेशनल एंथम करके नहीं, लेकिन उसका स्टेटस वही था और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन 2 स्टांजाज ही स्वीकारे गए थे.
1: पर सर,
4: और वो जब
1: आज के कानून
4: पारित हुआ उस वक्त
1: जरा सुनिए,
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें थे, उन्होंने भी मान्य किया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया. उसके बाद वाजपेयी साहब का सरकार आया, उन्होंने भी मान्य किया, वो सब लोग मान्य करते थे. एक बात मैं बोलता हूँ कि आज इतने बड़े पैमाने पे ये सारे वंदे मातरम की बातें करते हैं, मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वंदे मातरम की घोषणा देके, नारा देके लोग जेल में जाते थे, पुलिस के पटके खाते थे, लाठी खाते थे, गोलियां खाते थे और जेल में जाते थे. मौलाना आजाद भी वैसे ही गए, खान अब्दुल गफर खान
1: भी वैसे ही गए,
4: सारे मुसलमान जो गए वैसे ही गए.
1: हम इतिहास को डिस्कस कर चुके हैं. 2026 में अगर कानून आया है, क्या हर किसी को वो कानून मानना चाहिए? और वंदे मातरम को मैं एक एज अ फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि उसको पूरे 6 अगर छंद गा लिए जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
4: ऐसा
1: उसके 6 स्टैंजा गा के बिगड़ क्या जाएगा?
4: इसकी थर्ड ये देखिए, उसकी ठीक ढंग से चर्चा नहीं हुई. कानून गड़बड़ी में पास किया गया, ठीक ढंग से उसकी चर्चा नहीं हो गई थी. वो पूरी चर्चा होनी चाहिए थे और उसके बाद पास करेंगे तो मैं ये कहूंगा.
1: ये तो टेक्निकलिटी है,
4: वो बोल सकते हैं.
1: ये आप टेक्निकलिटी कर रहे हैं. मैं छोटा सा आपको उदाहरण देती हूं.
4: मेरा सुनने वाले होंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा. आपकी ये जो आदत है ना, बिल्कुल गलत बात है.
1: सर
4: सुनिए, आप कौन लगते हैं इस तरह से बातें करने वाले? मुझे बुलाया है ना, मुझे बुलाया तो ठीक ढंग से बात करो. पहले मुझे बोलने दो. आप चमचेगिरी सरकार की मत करो, मुझे बोलने दो.
1: सरकार की बात नहीं है ये, राष्ट्रगान
4: की है कि इसमें ये, अरे राष्ट्रगान है, हम भी मानते हैं. ये देखिए, मैं हुसैन दलवाई हूँ, मैं गणपति के उत्सव में जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल ही नहीं, ये इस देश के सेक्युलरिज्म का सवाल है. ये आप लोग जानते ही नहीं, ये सेक्युलरिज्म खलास करना चाहते हैं. ये जो इसराइल में जो राज है ना, वैसा राज यहाँ चलाना चाहते हैं.
1: पर वंदे मातरम पूरा गाने से सेक्युलरिज्म कैसे खत्म हो जाएगा?
4: हिटलर शाही चाहिए.
1: सेक्युलरिज्म कैसे खतरे में आएगा वंदे मातरम अगर पूरा
4: सवाल ही खत्म ही हो जाएगा
1: कैसे
4: सवाल ही नहीं हर बात में ये हो रहा है मैडम।

0: हर बात में जो चलाए ना हिंदुत्व, इसका मतलब ऐसा है दे वॉन्ट टू स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
1: हाँ,
0: ये उनके दिमाग में है।
1: व्हाट इन द वंदे मातरम
0: बोलकर गुरुजी बोले
1: हैं
0: ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, गोडवल गुरुजी बोले हैं। वो गोडवलकर गुरुजी को बोलते हैं कि ये गलत था, ऐसा बोल रहे हैं क्या?
1: सर लेट्स लीव असाइड गोडवलकर फॉर अ सेकंड, आई विल आस्क यू वेरी डायरेक्टली, यू सेड दे वांट टू अटैक सेक्युलरिज्म,
0: गलत बात है।
1: व्हाट इन वंदे मातरम पुट सेक्युलरिज्म एट रिस्क?
0: ये देखिए वंदे मातरम की दो स्टांजा जो संस्कृत में आए हैं उसमें सुजलाम सुफलाम इस देश के निसर्ग की और इस देश की बड़ी तारीफ की गई है। आगे के चार जो हैं उसमें हिंदू देव देवता हैं, इसलिए टैगोर साहब ने कहा कि ये दो स्टांजा जी लीजिए, बाकी का मत लीजिए। मेरा ये कहना नहीं कि आज क्या करने का, मेरा कहना ऐसा है कि जिनको ये देश हिंदुत्ववादी बनाना है इसलिए जानबूझ के लाया गया है, दूसरी कोई बात नहीं। ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल नहीं, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ की बात है, ये बात जरा ध्यान में लीजिए। ये सेक्युलरिज्म मानते हैं क्या? आप इनको क्यों नहीं पूछते क्या आप सेक्युलरिज्म मानते?
1: पूछ लेते हैं। सौमित्र चटर्जी इज अ डिसेंडेंट,
0: वो
1: सौमित्र चटर्जी इज अ बंकिम, इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बंकिम चटर्जी। एंड मिस्टर चटर्जी, लिसन टू मिस्टर दलाल, ही इज सेइंग वो गणपति में जाते हैं बट डोंट ट्राई एंड इम्पोज हिंदुत्व आइडियाज थ्रू वंदे मातरम ऑन हिम और एनीवन एल्स।
2: दैट इज द वे ही इज टॉकिंग, इट शोस हाउ कांग्रेस थिंक्स दैट फाइव जॉब, द वे ही इज एस्टैब्लिशिंग हिज आइडियाज, ही इज still thinking that India is their fiefdom. And more than above, he is talking of secularism. When the constitution was made, was there the term secularism in the preamble? He is talking the of the constituent assembly, everything. Was the term secularism was in the preamble? I put the question to him.
1: Mr. Dalvai, please respond and we will cut to the big windows and come to Pradeep Bhandari also there. Mr. Dalvai.
0: ऐसा है प्रियम्बल में है कि नहीं ये सवाल नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ये सेक्युलर है और उसको सेक्युलर और समाजवादी ये बातें डाली गई है, वो मान्य की गई है, सब लोगों ने मान्य किया था उसको, भाजपा ने विरोध नहीं किया था, ध्यान में रखो ये। अभी इस तरह का सवाल उठाना भी गलत है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये सेक्युलर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार ये कहा है। अभी सेक्युलरिज्म के खिलाफ के जो लोग हैं वो जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं, दे वांट टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सब चला है।
1: प्रदीप भंडारी, ये तो हो गया ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, द क्वेश्चन व्हिच हैड बीन सेटल्ड फॉर डेकेड्स, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्लेम पैशंस नाउ।
3: मैडम डेकेड्स तक तो ये कह रहे थे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा भी फहरा देना चाहिए, आर्टिकल 370 भी रहना चाहिए सेक्युलरिज्म के नाम पे, इसका है मतलब थोड़ी अन्याय होने देंगे। पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे झूठ बोला, उन्होंने दो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं किए थे। दूसरा पद्मजा, लेट्स टेक देयर आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड, इनने बोला कि भाई ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, मैं आर्मी के वॉर क्राय पढ़ना चाहता हूं, गोरखा राइफल्स का वॉर क्राय है जय महाकाली आयो गोरखाली, क्या ये कह रहे हैं कि आर्मी भी कम्युनल है? हुसैन दलवाई तो ये भी कहेंगे आर्मी भी कम्युनल है। दूसरी रेजिमेंट देते हैं, राजपूत रेजिमेंट कहती है बोलो बजरंग बली की जय, क्या इनके हिसाब से जो मुसलमान आर्मी के अंदर जा रहा है वो कम्युनल मुसलमान है? आर्मी के वॉर क्राय के अंदर देश की संस्कृति है, अगर ये हुसैन दलवाई की जिनने वाले माइंडसेट को आगे लेके जाए तो बोलेंगे आर्मी के अंदर भी जो ये क्राय चल रहा है वो भी मुसलमान वाला मुसलमानों के खिलाफ है, ये जिन्ना वाली सोच है। वंदे मातरम वो संग बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन 1905, रहमतुल्ला सयानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1896, वॉज ही अ कम्युनल मुस्लिम एज पर हिम? वॉज बाल गंगाधर कम्युनल? वॉज रविंद्रनाथ ठाकुर हू सैंग द एंटायर वंदे मातरम इन 1896 कम्युनल? इट वॉज प्रिसाइसली नेहरू इन 1937 हू सकम्ब्ड टू जिन्नाह प्रेशर and who agreed to partition of the
1: but
3: country.
1: But Rabindranath Tagore agreed to it. When Nehru ji spoke to Rabindranath Tagore,
3: Nehru
1: he agreed.
3: Because Nehru prevailed. With that logic, even temporarily, there was Article 370 with other freedom members of the Constituent Assembly had to agree as temporary. But these people made it as permanent. And it was Shyama Prasad Mukherjee who opposed it. Something which is a historical wrong has to be corrected because the spirit of the Indian Constitution is entire Vande Mataram. What is Hindu Muslim in Vande Mataram? And if it is Hindu Muslim, are the war cries of army also Hindu Muslim?
1: Mr.
0: ऐसा ये गलत बातें कहते हैं। एक तो ध्यान में रखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब पास हुई तो वंदे मातरम के दो स्टैंजास ही उसमें
3: आप उनका दिखा दो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला दो स्टैंजास होने चाहिए
0: की आदत है बार
3: मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं दिलवाई साहब
0: उनका झूठ सही
3: दिलवाई साहब कोर्ट कर दो
0: एक तरह से एक आर्मी का आदमी
3: दिलवाई साहब कोर्ट कर दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैंने कोर्ट कर दूंगा
0: ये नेशनल सॉन्ग क्या है इसमें फर्क नहीं इनको मालूम
3: अरे दलवाई साहब मैं फर्क मालूम पाकिस्तान
0: के खिलाफ लड़ सकता है
3: अरे
0: वो अलग बात
3: वो है आर्मी का उसमें भी कम्युनल है क्या
0: ना वो अकबर बोल के भी कासिम का
3: ना ना ना ना, ना। अल्लाह अकबर कोई भारत की सेना का वॉरक्राय नहीं है सिर्फ पाकिस्तान की सेना का है आप अपने घर पर अल्लाह अकबर बोल इबादत करते हुए आर्मी का वॉरक्राय अल्लाह अकबर नहीं है पाकिस्तान की आर्मी का वॉरक्राय अल्लाह अकबर है मैंने वॉरक्राय बताया वापस से बोलता हूँ राजपूत रेजिमेंट के लिए बोलो बजरंगबली की जय क्या मुसलमानों को बोलोगे की हिंदुस्तान की आर्मी में नहीं है आपके साथ व्हाट इज ही सेइंग No, let's take that argument forward.
1: Let him reply.
3: No.
1: Let him reply.
3: Na,
1: Mr. Dalvai, about the war cry of the Indian Army.
3: That is also with that logic.
1: Go on, Dalvai Saab. About the war cry of the Indian Army, when any soldier chants Bajrang Bali ki Jai or they invoke Durga Mata Sai, on the war
0: Indian
1: scene.
0: Indian Army ki baat alag. Mai ladai karne ke liye jata hoon, to ko kya nara deta hoon, ye alag baat hai.
3: अरे वो वॉर क्राय क्या बात कर रहे हैं
0: सॉन्ग
3: वंदे मातरम में क्या अलग हो गया अलग
0: ये दो बातें इकट्ठा लाना बिल्कुल गलत बात है
3: दलवाई साहब वंदे मातरम पूरे गाने में क्या एंटी
0: अल्लाह अकबर बोल के भी हल्ला कर सकता है ये इनके दिमाग
3: अरे वो अल्लाह अकबर करके जो हमला करते हैं वो पत्थरबाजी करते हैं आप उसको छोड़ो आप उस पर मत जाओ व्हाट इज एंटी मुस्लिम एंटायर वंदे मातरम
0: ये इनके ये इनके दिमाग में हिंदुत्व
3: अरे आपके दिमाग में जितना गुस्सा हुआ है हमारे दिमाग में संविधान है
0: दिमाग में सनातन धर्म की बात है इनके दिमाग में सनातन धर्म की बात है हिंदू
3: तो
0: धर्म
3: सनातन धर्म तो भारत के संविधान का एसेंस है बाबा साहब अंबेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ लो
0: जिसका इन्होंने खून किया ना वो गांधी जी हिंदू थे वो हमारे नेता थे वो हमें आज भी गांधी जी का नाम हम सर झुका के करते हैं लेते हैं
1: ओके लेट मी ब्रिंग इन सुमित्रो चैटर्जी बैक इन एंड आई विल आल्सो ब्रिंग इन विवेक बंसल ऑन दिस सुमित्रो चैटर्जी मिस्टर दलवाई इज आर्ग्यूइंग ओवर हियर दैट देयर इज अ स्पिरिट ऑफ हिंदुत्व इन द अदर स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम हाउ डू यू रिस्पोंड टू दैट मिस्टर चैटर्जी He says that there is a spirit of Hindutva and there's an imposition of Hindutva.
2: That is their prerogative to define Bande Mataram as per their way. But if you are an Indian, you have to accept Bande Mataram in all six stanzas. First. Second, Bande Mataram is not the spirit of Hindutva. Bande Mataram is the spirit of patriotism. That is the problem with the Congress Party. They always mix up patriotism with communal feelings. They are doing it purposefully for keeping their vote bank intact. They are afraid to call a spade a spade. They are afraid to accept Bande Mataram as a national song in all six stanzas.
1: Mr. Bansal, is the Congress confusing Hindutva, patriotism,
4: all of these
1: ideas.
4: Let me make my stand very clear on this. Whatever the controversy, it's digressing that the basic thing. I think it started on the fact that in the Congress party's function on the 15th August. First of all, let's go into the history. We all talked about history and all. That how this Vande Mataram was sung and the 1896 first time for the session and it played a pivotal role during the partition of Bengal way back in 1905. But at the same time, we have to keep this in mind. In 1937, it was decided that two stanzas of it would be sung.
1: But and sir, we have discussed history enough.
4: I beseech you to
1: please come back to 2026. Let me just ask you a straight question.
4: I'm coming back to that. I'm coming back. Let me just, because you asked me to chip in at the last moment. So I have to come with all these things. So the entire Vande Mataram is to be sung in government institutions. As a customary in Congress functions and all, only two stanzas are being sung. So unnecessarily, they are, because they don't have anything. You know, the sort of patriotism which they wear on their sleeves, somebody said that patriotism happens to be the last refuge of the scoundrel. Sorry to say, but this is what had been said, and exactly this is being done. You know, to...
1: So now are we attacking the idea of patriotism itself? Only scoundrels take refuge beyond patriotism?
4: I said the sort of patriotism which they are wearing on their sleeves. That's what I said.
1: Okay, answer the technicality, Pradeep Bhandari, that in a private Congress function, what happened on the 15th of August was a private Congress function. What Mallikarjun Kharge was at in Goa was a private Congress function, and they don't need to sing the full national song there.
3: Well, they are Dimagi Naxal ecosystem, guys. They are self-exposing themselves. But 10 seconds, we don't need lectures from Mr. Dalwai, because Mr. Dalwai is one of the men who was propounders of Hindu terror. That is just, I want to state on record. I'll come to that. Ms. Vivek ji is saying that Sonia Gandhi lied then. So for 24 hours after Sonia's video, Jairam Ramesh was saying, humne to pura Vande Mataram gaya, wahan pe kursi dekhne ke liye kar rahe the. Now you have Mr. Kharge who is saying, we will not sing more than two stanzas.
1: They are not required to.
3: He even said that I will not sing and I did not. He did not sing and he said, hum nahi kahenge. So Sonia Gandhi was lying, right? So Sonia Gandhi, as per Congress, interrupted Vande Mataram because it was sung in entirety. The Congress has accepted that it was fooling the people of the country. So Sonia Gandhi consciously lied. Can we just get that
4: respect for the first Nobel laureate of this country, Mr. Rabindranath Tagore, who with whose consent this all was?
3: He was the same person. Who sang that in entirety in
4: 1896.
3: Sir, we have passed it to the parliament of the country. If Gurudev Rabindranath Tagore was alive today, he would also follow the law of the land. Anybody irrespective of political ideology has to follow the law of the land. And you cannot be a patriot to not sing Vande Mataram. What is your issue with Vande Mataram and Jan Gan Man? The same concept you will tomorrow. This is the same idea with which they used to say that Hafiz Saeed terrorist is Hafiz Saeed ji. Secularism ke naam pe aatankwadiyon ko aatankwadi mat bolo. How far will we take this argument forward? Today it is Vande Mataram, tomorrow it will be Jan Gan Man, twice it will be something else. Where will this stop? Abhi aap Muslim League wali party ho. Arre sir, aap chodo sir, rehen do aap. आपकी खुद की पार्टी वाले, आपकी खुद की सरकार जो है वो कह रही थी यहाँ पे सब पूरे 2014 के पहले. ये देखो केरला गवर्नमेंट आपकी कह रही है कि वंदे मातरम में नहीं जाएंगे, तो आप मान रहे हो ना कि दैट इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द कांग्रेस. तो पद्मजा सोनिया गांधी लाइट इज व्हाट कांग्रेस इज अग्री टू. देयर कैन ओनली बी टू थिंग्स. अरे सर, लीव दैट असाइड, इट इज ऑल फेक न्यूज. अभी वी वर नॉट इन फाइव स्टार जेल लाइक जवाहरलाल नेहरू. वी वेंट टू काला पानी. Okay, relax.
4: During the 1942 Quit India movement, please.
3: Yes, Baba Sahib Ambedkar also did not participate in Quit India movement. So you call Baba Sahib Ambedkar as an anti-national? What are you saying?
4: What is your contribution in the
1: freedom? Okay, let's bring it back to the present. Because the more we try and go back to the past, we go back a century, then what is happening in the present is missed out. And Mr. Dalwai, since you said that Vande Mataram was an effort to try and impose Hindutva, or at least the remaining four stanzas were an attempt to impose Hindutva, let me quote to you what Maulana Abul Kalam Azad, the great Islamic scholar and thinker, he said about Vande Mataram. Not just two stanzas, all of Vande Mataram. He said it is a fusion of endogenic creativity, Islamic doctrines of Wahadat, Edeen and Sulah-e-Kul. Remember that when he was the Congress president, first elected at the age of 35 in 1923 and held the longest continuous term from 1940 to 1946, Vande Mataram was sung in its entirety at every session of the party. So at that time, in 1923, when he was first elected, Vande Mataram was being sung in its entirety. So Abul Kalam Azad had no problem with all of Vande Mataram. He didn't think that it was an imposition of Hindutva, Dalwai Saab.
0: मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कमाल है. दो स्टैंडर्ड्स का प्रॉब्लम मौलाना आजाद को नहीं था और
3: स्टैंडर्ड्स की बात है. फिर ये झूठ बोल रहे.
0: ये वंदे मातरम बोल के लोग जरा अभी मेरा सुनेंगे क्या?
1: सर, वो 1923 में बने थे. ही वाज फर्स्ट इलेक्टेड इन 1923. दैट टाइम वंदे मातरम हैड नॉट बीन ट्रंकेटेड.
0: मौलाना आजाद ने भी लड़ाई की ब्रिटिशों के साथ.
1: पर सर, उन्होंने तो पूरा वंदे मातरम गाया भी, गवाया भी.
0: वंदे मातरम ये लोग तो वंदे मातरम के खिलाफ थे उस वक्त. ध्यान में रखिए, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा इसलिए भाग जाते थे. वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते रहते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ।
1: सर लीव दैट असाइड, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द फंडामेंटल क्वेश्चन यू रेज्ड अर्लियर, कि हमें हमें दो स्टैंजा से प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी के स्टैंजा है वो हिंदुत्व इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ दुर्गा स्तुति की बात की गई है।
0: स्वतंत्र दिन मनाया नहीं जाता
1: सर, कोई बात नहीं, आप उनको अटैक कीजिए, आप उनको अटैक कीजिए, दैट्स अ पॉलिटिकल वॉर। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद वंदे मातरम?
0: उसमें जो अशोक चक्र है वो भी उनको मान्य नहीं, ये होलकर कोर ने साफ लिखा है, अभी तक वो ये कर रहे थे, अभी हमें वंदे मातरम की बात
1: हो। हुसैन दलवाई साहब, बाय ऑल मींस यू वांट टू डिबेट विद द बीजेपी एंड आरएसएस ऑन देयर कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यू प्लीज डू सो। माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई देयर इज एन ऑपोजिशन टू वंदे मातरम इन इट्स एंटायरिटी। लेट मी कोट टू यू अनदर एग्जांपल, डू यू नो व्हाट अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, लेट मी कोट टू यू रफी अहमद किदवई, he said Vande Mataram has been sung at the beginning of Congress sessions for years, Muslims began opposing it only since 1930. This is Rafi Ahmed Kidwai saying it. Bengali writer Rezaul Karim, he also echoed a similar sentiment in 1930s, where he wrote that it is the British who incited the controversy to exclude Muslims from the freedom struggle. So this entire thing that Vande Mataram is against Islam or it is imposition of Hindutva, you had Rezaul Karim who said that it is the British who were trying to divide and rule by making Vande Mataram seem anti-Muslim. And these are all tall leaders in the Congress who said it. We are succumbing to what the British were trying to do at that time, sir, in the 1930s.
0: एक तो ऑफिशियल इसमें पूरा वंदे मातरम बोलने के बारे में कानून हो गया, बाहर कोई क्या करता है, झंडा वंदन जब होता है तो वंदे मातरम बोला ही नहीं जाता, बहुत जगह जहाँ बोला जाता है दो स्टैंजर्स बोले जाते हैं उसमें कोई ऑफिशियल उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेकिन मुसलमानों को ये चर्चा में ये कहूँगा, अगर कहाँ पूरा वंदे मातरम कहता है तो उसका आदर कीजिए, वो आप नहीं कहेंगे तो भी चलेगा लेकिन उसका आदर होना चाहिए। कहाँ भी अनादर करने की कोई भी मजहबी बात है उसका अनादर किसने भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा हमेशा स्टैंड रहा है।
1: थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा अनादर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ये बता दीजिए कि उसको पूरा क्यों नहीं गाया जा रहा है।
0: सेक्युलर पर्सन,
1: I thank you. If you are secular, I mean, you say you are secular, I'm sure you are secular, and I really appreciate that. I appreciate that you are saying it shouldn't be disrespected. So then answer me, why was it cut short in Goa? Why was it not sung in Kerala? The Kerala government did not sing at all in any of their Independence Day functions. Why? ये तो अनादर ही हुआ ना, उसको नहीं गाना।
0: ऐसा है कि ये क्या ये गाना नहीं है, गाना अलग है और नेशनल सॉन्ग अलग है। नेशनल सॉन्ग यानी नेशन के बारे में आप बोलते हैं, आप नेशन को छोड़ के देव देवता के बारे में बोलने लगे तो कैसे चलेगा? आप भी जरा इसका
1: प्रदीप भंडारी
0: और रफी अहमद से की बातें आप कर रहे हो, उन्होंने पूरा कहा था, ये सही बात नहीं है।
3: ही रिप्रेजेंट्स द स्कूल ऑफ थॉट रिप्रेजेंटेड बाय शर्जील इमाम, that is exactly what he does not represent, the school of thought represent reflected.
1: No, why are you bringing Sharjeel Imam?
3: Because he's the man who defended Sharjeel Imam, he's the man who defended Sharjeel Imam on record. I'm only saying that his school of thought says that Vande Mataram is not to do with patriotism, it is to do with Hindu Muslim. I am asking a fundamental question, that Vande Mataram is the national song, it is passed by the parliament of the country, no court of the law country has said that it is not the national song. As an Indian, we are Indians first, Hindus Muslims later. Is it not our fundamental duty under 51A to not just respect the national song but also sing it in entirety whenever it is there? That's what our basic duty is. This is the difference between us and Pakistan. Pakistan was religion first, patriotism later. We are patriotism first, religion less. And even Rabindranath Thakur spoke about it. Just because Nehru did something catastrophic in 1937 does not mean it is correct.
1: Okay, let me actually set the record straight when it comes to the law. Mr. Bansal, I'm sure you're referring to the law again. And when you said earlier that in private functions, we are not required to sing the national song at all. Let's just lay out for our viewers what the legal position on the singing of Vande Mataram is now. So first, let's talk about the law, Prevention of Insults to National Honor Amendment Act 2026. The law says, Clause 3A, prevents singing of national anthem and song if somebody prevents, whoever intentionally prevents the singing of the national anthem or national song, or clause 3b, causes disturbance to assembly where this song is being sung. What is the penalty according to the law if somebody prevents the singing of the national song or if somebody disturbs the singing of the national song? The penalty is there of, can we please go on to the penalty? The penalty is of up to 3-year prison term, a fine, or both. Up to 3-year prison term and fine both. And did the Congress in these two cases then end up violating the law? So in Delhi, a case could be made out of disturbance. But when it comes to Kerala and Goa, where the song either wasn't sung at all or where it was truncated to only two stanzas, it goes against the MHA order, which doesn't really have any legal penalty as of right now. Mr. Bansal. So technically, it is a violation even if you truncate in a private. So it doesn't make a distinction between a private function or a government function. Mr. Bansal.
5: Yeah, sorry. Hello.
1: Yes, the law does not make a distinction between a private function or a government function. Even if somebody disturbs the singing of Vande Mataram, which can be interpreted as to what happened in Delhi, that would be called a violation of the law. Mr. Bansal.
4: Difference. Law doesn't permit namaz or prayers on the streets, but law cannot stop in any private building. So don't please try to generalize things, and law doesn't differentiate. It definitely differentiate. And let me say one thing, that why unnecessarily a controversy is being created. We respect our freedom fighters. We respect Congress was the pivot under whose aegis or leadership this country got independence. And at that point of time, out of consensus, we respect our first Nobel laureate, poet Rabindranath Tagore. And he in consultation with Pandit Jawaharlal Nehru, this was decided that first two stanzas would be sung by as a national song. So why unnecessarily? And moreover, as in Congress office, traditionally two stanzas were sung. So that was the thing. Unnecessarily that we are, Sonia ji is objected to it. Definitely, this family has a tradition. This family has done have passed through all the tests of nationalism and patriotism. So to question their patriotism or heckle them for what is their love for the nation, please. And these people don't have to show us. Mr. Chatterjee,
1: don't question other people's patriotism.
4: Power is secondary. For us, like Gandhi said, power is a means for an end.
1: Pradeep Bhandari, don't question patriotism.
3: I will. I don't need to. They are self-exposed. Their version of patriotism is Binayak Sen, who was the National Advisory Council member advising Sonia Gandhi, who was convicted of sedition. I'll not go there. Their patriotism is when they did not attack Pakistan after 26/11. But I'll come to the fundamental point, Padmaja. There are only two things which are possible. A, that if you believe in the Constitution of India, if the Congress believes so, they have to follow a law which is passed by the Parliament of the country. B, any patriot across geographies, how will he look at Hindu-Muslim from the lens of Vande Mataram? Only those who have the Muslim League mindset can do so, because Vande Mataram in entirety has been sung in the past by our freedom fighters. And please note, just because something has been going on for 60-70 years does not mean it is correct. As I said and reiterated, UCC was not implemented for 60-70 years does not mean that the Constitution did not abide by it. 51A spoke about respect to national anthem and national song at the same time. Congress did not abide by it. There was no abrogation of 370. A terrorist was called as G. Terrorists were eulogized. Just because Congress did it for 70 years does not mean that it was the spirit of the Constitution. And just because Nehru succumbed in 1937 to Jinnah and led to partition and led to truncation of Vande Mataram does not mean it was correct.
1: Okay, Mr. Dalwai wants to respond.
0: ऐसा ये देखिए, ये सवाल अभी क्यों आया है? इसका सोच करना चाहिए. मैं ये बोलूँगा, अगर पूरा वंदे मातरम कहाँ गाया जाता है और वहाँ मैं हूँ, I will respectfully hear it. I won't object that. लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, तोरा मुझे बोलने अब लो अब. ये अभी क्यों लाया गया है? अभी ये जो anti गवर्नमेंट वातावरण जो हो रहा है ना, ये जो स्टूडेंट्स ने जो वातावरण किया है, राहुल गांधी ने जो वातावरण किया है
3: झारखंड में,
0: से सरकार डर गई है और दरार करने के लिए लाया गया है, क्योंकि ब्रिटिश
3: एक वंदे मातरम जो देशभक्ति की बात है, जिसको देशभक्ति दरार देखे, जिसको शर्जील में अमाम यूनाइट देखे, उसका भगवान भी मालिक नहीं है।
0: इनका इनका
3: आप ना अपना जहर अंदर का एक्सपोज कर रहे हो। वंदे मातरम को अगर आप जो है दरार डालने वाला कह रहे हो,
0: दलाली
3: लगता है आपकी मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता और शर्जील इमाम की मानसिकता में कोई फर्क नहीं।
0: कैसी मानेंगे उनकी बातें?
3: अरे मत मानो ना आप, तभी तो आप मुस्लिम लीग वाली कांग्रेस हो।
0: वंदे मातरम बोल के जो भाग रहे थे,
3: अरे भाई वंदे मातरम हमने बोला, आप तो छोड़ो, आपके जवाहरलाल नेहरू ने 37 में जाके बेड़ा गर्क कर दिया, जिससे देश का पार्टीशन हो गया, वरना जाके यूनाइटेड भारत होता। आप तो भूल ही जाओ, मैं एडविना माउंटबेटन से लेके जहां तक शुरू करूंगा, छोड़ो अभी ये पार्लियामेंट ने पास किया, आपको कानून को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप पार्लियामेंट और देश के एक संविधान में विश्वास रखते हो, वरना एक फालतू कॉपी जो दिखाते हो ना, अपने आप एक्सपोज होते हो।
0: कमाल है साहब, जरा जरा जरा हिस्ट्री,
3: अरे सर मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मैंने मदरसा में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी है।
1: लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल,
3: पहले मैंने जनरल बोला, इसमें क्या फैक्ट है? मैंने मदरसा में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी, इसमें क्या पर्सनल है
0: यार? उनका तो,
3: अरे मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी, व्हाट इज पर्सनल इन दैट?
1: ओके, वन एट अ टाइम, लेट हिम स्पीक।
0: कहां थे? मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में थे।
3: गलत है, कृषा प्रजक पार्टी के साथ अलायंस किया था, मुस्लिम लीग के साथ कोई अलायंस नहीं किया था। क्यों झूठ बोल रहे हो यार?
1: बट हुसैन दवे साहब, जहां तक आपका ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि अभी जेन जी के आंदोलन की वजह से इसको लाया गया है, आपको याद होगा कि पहली बार ये पिछले साल इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया था अबाउट व्हाई वंदे मातरम वाज ट्रंकेटेड, सो दैट आर्ग्यूमेंट डजंट रियली होल्ड। वंदे मातरम द इशू हैजंट बीन टेकन अप इन द लास्ट वन मंथ, ये पूरा एजिटेशन तो एक दो महीने का ही है ना, और वंदे मातरम उससे बहुत पहले है। इन कंक्लूजन आई वांट टू गिव द लास्ट वर्ड टू सुमित्रो चैटर्जी, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी? डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डाई डाउन, और आर वी नाउ गोइंग टू सी a case of your Vande Mataram versus my Vande Mataram? And in that, I want to quote from the letter that you have written as well, where you have reminded people of what it is that Bankim Chandra Chatterjee had said at the time of writing the national song.
6: Sorry, I couldn't follow.
1: What do you make of this controversy? Do you think that now it is going to be a case of two versions, what the Congress finds acceptable and what the rest of the country sings?
6: Rest of the country believes to sing the Vande Mataram in totality, but Congress may have a different idea, because Congress always want to have to bank upon their vote bank of the particular community. And to my thinking, and I think to the thinking of the total whole of India, Vande Mataram in all six stanzas is for patriotism. But Congress will always try to divide, which they have learned from their British masters.
1: But many will argue you are saying that because you're a BJP MLA.
6: No, not at all. Not at all. Prior to that, I was in civil service. After my retirement, I have joined BJP. So what I am saying is that I am really hurt. And I used to feel bad when the Vande Mataram was sung in a truncated fashion, leaving two stanzas. Only two stanzas are being sung.
1: Okay. Let's hope that at least we will reach a bipartisan consensus on the national song. But to each his own. For the time being, thank you very much, all gentlemen, for having joined me. And let me cut straight across now to Amrita Fadnavis, who also is joining us on the issue of Vande Mataram. Thank you very much, ma'am, for speaking to us. Let me start by just asking you the simple argument of the Congress now. They are saying that they are singing the version of Vande Mataram that was sung by Gandhiji and Nehruji. Why should the government get to decide who sings what?
7: फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट कांग्रेस की ये जो विभाजनवादी मानसिकता है, दिस इज कमिंग आउट विद व्हाट दे आर सेइंग। दिस जो ये दिस वंदे मातरम जो दिस गीत हैज गिवन इक्विवेलेंट स्टेटस टू आर राष्ट्र गान, एंड दिस हैज बीन पास्ड एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो आई थिंक सो कांग्रेस शुड respect what has been passed in the parliament, and it's a part of respecting constitution. After 80 years, Modi ji through Lal Killa has made it possible that we could hear the full Vande Mataram gaan, which was earlier sung for our freedom during our freedom struggle and it was sung even by Gandhiji and our people of our country who had struggled for our freedom. So it's an insult to our own emotion, to our own constitution, to our own parliament, and to

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आरती और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious.

0: वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
3: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for
4: And now we get to a rather unusual political controversy from Punjab, one that quite literally has people dancing around a knee replacement.

0: 11-year-old Rishabh Patole was riding on a motorcycle with his father and sister in Pune last evening. The bike hit a broken stretch of road, skidded, fell into a pothole, and Rishabh fell directly under the wheels of a passing tempo truck. He died on the spot, 11 years old. A child killed on a road he must have been driven on hundreds of times. And the timing makes this even more infuriating, because just as Rishabh died, and that's him you see in these pictures, Maharashtra's Deputy Chief Minister Eknath Shinde was ordering municipal corporations in the state to make roads pothole-free before Ganesh Chaturthi next month. In the Chakan region, the promise is even more specific: fix all potholes by the 31st of August. But why does it take a festival deadline to make safe roads an emergency for the government? Because look at what else Maharashtra's transport machinery is busy doing right now. From today, by the way, RTOs are checking whether auto and taxi drivers can speak Marathi. Fail to acquire working knowledge and you can ultimately lose the authorization that allows you to earn your livelihood. The government says this is about passenger convenience and respect for Maharashtra's language. But is this really your priority when children like Rishabh are dying in potholes on your watch? Is your priority policing livelihoods, especially in a state where linguistic chauvinism has repeatedly spilled into intimidation and violence? You have to ask whether passenger convenience is really the whole story. Please consider these facts tonight. The Government of India's data says potholes cause on an average 75 accidents and kill just under 50 people in Maharashtra every single year. So tonight, this isn't Marathi versus non-Marathi. It is about totally misplaced priorities of our governments. Language politics generates headlines, applause, and political mileage. Filling potholes is boring, invisible, governance. Until an 11-year-old called Rishabh Patole falls under a truck. Maybe government needs to spend less energy policing the language of the person driving you and much more energy making sure the road beneath you doesn't end your life. And on this very, very tragic day, I'm joined live by Sandeep Patole, the father of little Rishabh, who lost his life in that accident. Sandeep ji, sabse pehle, Rishabh ke jaane ka hame behad dukh hai. Is waqt aapse baat karna bhi bahut mushkil hoga, lekin agar Sandeep ji, aap bata sakte hain, us din aakhir hua kya tha?
1: Yes, so मैं संदीप पाटोले एज ए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अभी इंजोड़ी में विप्रो कंपनी में एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और पिछले 15 सालों से मैं इधर रहता हूँ. तो मैं एज ए रेगुलर रूटीन कल भी उसी तरह अपनी बेटी और बेटे को लेके ट्यूशंस के लिए 6 बजे के आसपास, जो कि भद्रेशील साइड में है, भद्रेशील साइड एक प्रोजेक्ट है भद्रेश का, उधर जा रहा था. तो जैसे ये घर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास. तो मैं कल भी उसी तरह जा रहा था 6 बजे अपने बच्चों को ट्यूशन में छोड़ने के लिए. उस टाइम एक मैं लगभग 10-15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैं एक साइड से जा रहा था तो बीच में ही एक खराब रोड और गड्ढे की वजह से एक टेम्पो, जो आयशर टेम्पो है, वो मेरे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गया और उसने थोड़ा सा टिल्ट किया और मेरी तरफ उसने टर्न मारा. तो गड्ढे की वजह से उसका टेम्पो वाइबल हुआ और वो सीधा मेरे बेटे को मेरे बेटे के दिमाग पे इधर थोड़ा सा एकदम सा धक्का लग गया और मेरी बाइक स्किड हो गई वहां पे. और हम तीनों भी, मतलब मैं, मेरी बेटी और बेटा, तीनों भी बाइक स्किड होके गिर गए और उसी में उसको बहुत नाक और कान से बहुत सारा खून निकल रहा था. तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने खुद को सवार लिया, मुझे भी थोड़ा लगा है, लेकिन मैंने देखा कि उसको बहुत सारा खून आ रहा है. तो मैंने उसको बाजू में लेके आया, उठाया और फिर हेल्प के लिए पुकार रहा था. तो एक दो लोगों ने आके उसको गाड़ी निकाली और मेरे को आगे लेके गए साइड में. और उसके बाद उन्होंने मैं चिल्लाता रहा कि इट्स मींस ब्लडिंग बहुत हो रहा है, तो उसको कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत है, कोई तो हेल्प करो. तो मैं लगभग 3-4 मिनट यही करता रहा था, लेकिन अफसोस की कोई भी आगे नहीं आ रहा था. लेकिन लास्ट में एक जो कि क्या वाला रहता है, ओला या उबर वाला, तो

0: कौन सा था, बट उसने इंसानियत के नाते वहां पे कैब लाके खड़े कर दिए और पूरे पीस में डालो और लेके चलते हैं। तब तक पेट्रोलिंग करने वाले जो दो पुलिस के कर्मचारी थे वो उधर आ गए और हमने तीनों ने मिला के उसको, हम तीनों भी उसमें बैठ गए कैब में और उन्होंने हमें आगे, वो पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले आगे चलते उनको रास्ता तैयार करके मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन उसमें लगभग 20 से 25 मिनट, लगभग 15-20 मिनट के आसपास उतना टाइम तो चला गया और उसका बहुत स्वेलिंग हो रहा था, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उसका वो ये खो गया था, उसका बेहोश हो गया था। तो बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया और डॉक्टर ने उन्होंने अपना CPR वगैरह वो ट्रीटमेंट चालू कर दी। लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि भाई हम उसका बहुत सारा ये हो गया, हार्ट का रेट लगभग पहले से ही उसका हार्ट बंद पड़ गया है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे 15-20 मिनट के बाद और कोशिश करके उन्होंने लास्ट में मेरे बेटे को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। तो ये अनहोनी मेरे साथ जो हुई है और सिर्फ ये अपने जो रोड है और जो गड्ढे है, मतलब पुणे में ही नहीं बल्कि सब जगह यही हाल है। और ऐसा है कि गड्ढे भरते हैं तो 5 दिन में उसका उसमें कुछ मिट्टी मिट्टी मिला देते हैं लगभग, तो कुछ भी नहीं है और बहुत सारे गड्ढे। अगर आपको देखना है तो आप कभी भी जाके देख सकते हो रोड की हालत क्या है, कितने गड्ढे, एक तरफ का तो बंद ही है एक तरफ में। और वो इंजोड़ी का IT ट्रैफिक है जो उधर से जाता है जो फेज 1 फेज 2 की तरफ फेज 3 की तरफ जाता है, तो रोज का हाल है। और कोई रोज 12-15 दिन महीने में एक दिन ऐसा इंसिडेंट होते रहता है जो कि बहुत सारे लोडिंग व्हीकल जो रहते हैं जिसको अलाउड नहीं है उस टाइम में, वो भी उधर दिन रात उनका चालू रहता है, जो कि टैंकर्स हो, डिपर हो, डंपर हो या फिर और कोई जो नाव व्हीकल्स है वो हमेशा चालू रहते हैं। इसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जाती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को कब जाके वो जगने वाले हैं, कब जाके वो जो भी रूल्स है रेगुलेशन से लाने वाले। और आम तो ये मेरा ये मतलब अभी मेरे को तो सहानुभूति देने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरा जो बेटा उसमें लॉस हुआ है वो कौन भर के दे सकता है क्या? तो मेरा ये सवाल है आपसे कि प्रशासन और जो भी शासन है उनसे कि भाई आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर दीजिए कि जो अच्छे रोड्स हो, अच्छा जो कि पॉलिटिक रूल्स फॉलो करे और जो भी जिनके लिए रूल्स लगाए वो भी फॉलो करे, तो कुछ ना कुछ जाके बाकी के लोगों को। तो मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया लेकिन बाकी के लोगों की तो बच सकती है, क्योंकि ये बात आज से आप भी अगर देखते हो तो बहुत बार बार बार बार होते ही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उस पर कंट्रोल हो सके। और
1: संदीप जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि गणेश पूजा से पहले सड़कों के सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। ऋषभ के साथ जो हुआ उसके बाद आप इस वादे को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि सितंबर 14 के अंदर अंदर सारे गड्ढे को रिपेयर किए जाएंगे।
0: देखिए वो जो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है तो उनका तो डेडलाइन रहा होगा, लेकिन अभी क्या है कि मैं मतलब अभी तो मेरे बेटे की जान चली गई ना, तो एटलीस्ट गड्ढे भरे होते, ठीक तरह से काम किया होता ठेकेदारों ने या फिर जो भी करने वाले इनके अंडर आता है, तो उधर का एक प्रॉब्लम है कि ये रोड करेगा कौन, एक MIDC कोई बोलता है कि MIDC के अंदर है तो MIDC वाले करेंगे और दूसरे बोलते हैं कि ये इसके PMRD में आता है तो PMRD वाले करेंगे, तो उनको ही पता नहीं कि कौन कर रहा है कौन मालिक है। और आप अगर उधर जाकर देखोगे तो इतनी सारी बड़ी सोसाइटीज है, गोदरेज है, VTP है, बहुत सारे सोसाइटीज है, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट लिया है, वो बहुत सारा टैक्स भी भरते है, लेकिन उनके बावजूद उनको सिर्फ गड्ढे पानी और उसकी वजह से मच्छर और यही यही रोज का हाल है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से या जो भी वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से उनसे अपील है कि भाई आप एक कुछ ना कुछ तो एक सेंटर पॉइंट निकाल के कुछ ये जल्दी कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को आम लोगों को तकलीफ ना मिले और वो अपना डेली रूटीन है वो ठीक तरह से निभा पाए या फिर ऑफिस या जब भी किसी मार्केट या किसी के किसी भी चीज के लिए उसे जाना हो तो वो ठीक तरह से कर पाए।
1: हम NDTV की तरफ से फिर से हम बताते हैं आपको संदीप जी कि हम सवाल पूछते रहेंगे इस मुद्दे पर और हम रिपोर्ट करते रहेंगे जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉट होल्स जो है, हम सवाल करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्यन मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.
6: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमेंड बनना नहीं आसान है।
7: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, the Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal. New possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister Sishir Khanna, Finance Minister Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha.

0: And we're starting off with some breaking news right now. Pakistan government has now decided to file a review petition against the Supreme Court's decision. The government's notification of today will be challenged in the Supreme Court, and this is regarding the Supreme Court's directive to move Imran Khan out of the Adiyala jail to a private hospital, that's at the Al-Shifa hospital, before the next hearing, that's on September 16. However, the Pakistan government now opposes Khan's hospital transfer, and it says, the Pak government says, that we will challenge this order. The Pakistan government has taken the Supreme Court order head on. This, of course, at a time when the Pakistan government is extremely against Imran Khan being moved out of Adiyala jail, despite mounting concerns regarding the former Pakistan Prime Minister's health concerns, with especially reports now indicating that he might have lost his right eyesight and that his health condition has extremely worsened. There was a health report submitted earlier, a few weeks ago, after which the Supreme Court gave out this order that Imran Khan needs to be removed out of the Adiyala jail and to a private hospital because of his worsening health conditions. But the Pakistan government is against that judgment now, and the Pakistan government says that we will challenge that order. Meanwhile, India's journey can be traced through the words of its leaders. Over the last decade, Prime Minister Modi's Independence Day speeches have evolved from basic needs and plugging gaps to ambition, capability, and global leadership. We look back at that changing vocabulary of a changing India.
1: It's faced like toilets, electricity, poverty, roads, bank accounts, and fertilizer shortages. The Prime Minister's challenge was to fix what was broken, reach those who had been left out. Over the years, his vocabulary began to change. The thrust of his speech moved from access to aspiration, from plugging gaps to building capability, from solving immediate problems to creating systems to prevent those problems. The sweep of Prime Minister Narendra Modi's Independence Day addresses has defined New India's tryst with a 21st century destiny. These are not simply annual speeches, they are a running record of the country's transformation.
2: 21st sadi mein hum jee rahe hain. Kya kabhi hamare man ko peeda hui? Aaj bhi hamari mataon behno ko khule mein shauch ke liye jana chahte hain. Dignity of women. Kya ye hum sabka daitv nahi hai?
3: आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चीप का महात्म्य हम समझते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है. और इसे, इस चीप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो. और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके.
4: ग्रामीण सड़क हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले.
3: हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी देश के नाम को रोशन करने में कभी कोई कमी नहीं रखी. विश्व के संदर्भ में हो और भारत की आवश्यकता के संदर्भ में, कौन हिंदुस्तानी गर्व नहीं करेगा जब मेरे देश के वैज्ञानिकों ने एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया था. चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है. हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं. हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं. जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है. पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है।
1: Alleviating the poor in the country had always been on top of the list of the Prime Minister's concerns, and over the past 12 years, this is a topic that he has addressed in his speeches.
2: सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजय श्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले।
3: जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है।
1: Prime Minister's respect for women has been evident in his actions and their pain that he tended to personalize.
2: 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ वुमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों के इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं?
3: भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं।
1: The stress of the agriculture sector and its removal has been one of the cornerstones of the Prime Minister's policies, something he has been striving towards eradicating right from the word go.
2: आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा?
3: इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहा था, राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP मिलना चाहिए। सालों से चर्चा चल रही थी, फाइलें चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी, लेकिन हमने फैसला लिया, हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP दिया जाएगा।
2: भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा।
3: भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
1: A nation is strong when its economy is strengthened right down to its most basic participants. In this, the Prime Minister's stand has been towards pushing for self-confidence and self-reliant innovation amongst the young entrepreneurs of India.
3: इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा सरकम है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।
1: Pushing for high-end, self-reliant technology, 12 years of advancement has built a solid foundation for India at the helm of enterprise.
5: Electrical se lekar ke electronic tak, from make in India, chemicals se lekar ke pharmaceutical tak, from make in India, automobile se lekar ke agro value addition tak, from make in India. पेपर हो या प्लास्टिक, कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सम मरीन, कम मेक इन इंडिया।
3: इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करें। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए, और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा।
2: अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं, और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।
3: एक जमाना हमने देखा है, 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर, करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए।
1: Security is beyond compromise, and the Prime Minister has been very clear in his attitude towards how the scourge of Naxalism should be handled. He has always made it a point to thank the forces that defended the nation from homegrown extremism.
2: और मुझे खुशी है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से, खास करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान वापिस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवाद देश को रक्त से रंजित कर रहा है, आए दिन हिंसा की वारदातें करना, भाग जाना, जंगलों में छिप जाना, लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण, विकास की नई नई योजनाओं के कारण, जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों के कारण जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 126 जिलों में मौत के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा था, आज वो कम होकर के करीब करीब 90 जिलों तक आ गया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था, माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
3: 60 साल के से भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे, गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे।
6: यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजूबा कर रहा है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है।
3: हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। आपने झारखंड के बाहर
1: Over the years, the Prime Minister's vocabulary has changed as his concerns and his concentration moved from access to aspiration. He had his mandate very clear in his mind as he saw himself evolve as well with the country. And perhaps that is also why the sweep of his Independence Day addresses have become a phenomenon in themselves.

0: परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठे आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
1: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हजार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे है. लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
2: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरी जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
3: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
0: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे ही बुझाने चाहिए और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.
4: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September and we will wholeheartedly support that protest.
5: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, उन सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो.
3: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adiala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
6: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adiala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A 3-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adiala jail to Shifa International Hospital within 48 hours. The court has directed that he should remain there until at least the next hearing on September 16th. The intervention follows fresh concerns over Khan's physical condition. A medical report submitted to the court indicated fluctuating and uncontrolled blood pressure, palpitations, headaches, and anxiety. Jail authorities have linked some of the anxiety to restricted contact with his family. However, one of the most serious concerns has been his eyesight. Khan had developed a retinal condition affecting

0: तो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरी जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए। मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए, जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए।
1: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mulange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
2: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से, नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे ही बुझाने चाहिए और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है।
3: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September and we will wholeheartedly support that protest.
4: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो।
1: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adiala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
5: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adiala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A three-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adiala jail to Shifa International Hospital within 48 hours. The court has directed that he should remain there until at least the next hearing on September 16th. The intervention follows fresh concerns over Khan's physical condition. A medical report submitted to the court indicated fluctuating and uncontrolled blood pressure, palpitations, headaches and anxiety. Jail authorities have linked some of the anxiety to restricted contact with his family. However, one of the most serious concerns has been his eyesight. Khan had developed a retinal condition affecting his right eye.
6: सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं।
5: The issue is not just medical. It is also about how Khan has been kept inside the Adiala jail. Khan's supporters have repeatedly alleged that he has been kept in isolation and has been subjected to mental and physical torture. Amid all of this, the Supreme Court's order represents a delicate balance. On the one side, Khan's constitutional right to health and medical care. On the other, the authorities' concerns over security, access and political mobilization. Bureau Report, NDTV.
1: And well, that's all that we could pack for you in this edition. Slipping into a very short break. Good night. See you tomorrow.

0: में एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ, और पिछले 15 सालों से मैं इधर रहता हूँ। तो मैं एज ए रेगुलर रूटीन कल भी उसी तरह अपनी बेटी और बेटे को लेके ट्यूशंस के लिए 6 बजे के आसपास, जो कि बदरेज हिल साइड में है, बदरेज हिल साइड एक प्रोजेक्ट है बदरेज का, उधर जा रहा था। तो जैसे ये घर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो मैं कल भी उसी तरह जा रहा था 6 बजे अपने बच्चों को ट्यूशन में छोड़ने के लिए। उस टाइम एक मैं लगभग 10-15 मिनट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैं एक साइड से जा रहा था तो बीच में ही एक खराब रोड और गड्ढे की वजह से एक टेम्पो, जो आइशर टेम्पो है, वो मेरे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गया और उसने थोड़ा सा टिल्ट किया और मेरी तरफ उसने टर्न मारा, तो और गड्ढे की वजह से उसका टेम्पो वाइबल हुआ और वो सीधा मेरे बेटे को दिमाग मेरे बेटे के दिमाग पे इधर थोड़ा सा एकदम सा धक्का लग गया और मेरे बाइक स्किड हो गई वहां पे। और हम तीनों भी, मतलब मैं, मेरी बेटी और बेटा, तीनों भी बाइक स्किड होके गिर गए। और उसी में उसको बहुत नाक और कान से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने खुद को संवार लिया, मुझे भी थोड़ा लगा है, लेकिन मैंने देखा कि उसको बहुत सारा खून आ रहा है। तो मैंने तो बाजू में लेके आया, उठाया और फिर हेल्प के लिए पुकार रहा था। तो एक दो लोगों ने आके उसको गाड़ी निकाली और मेरे को आगे लेके गए साइड में। और उसके बाद उन्होंने, मैं चिल्लाता रहा कि इट्स मीन्स ब्लडिंग बहुत हो रहा है, तो उसको कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत है, कोई तो हेल्प करो हेल्प करो। तो मैं लगभग 3-4 मिनट यही करता रहा था, लेकिन अफसोस की कोई भी आगे नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट में एक जो कि क्या वाला रहता है, ओला या उबर वाला, तो पता नहीं कौन सा था, बट उसने इंसानियत के नाते वहां पे कैब लाके खड़ी कर दी, पूरे पीस में डालो लेके चलते। तब तक पेट्रोलिंग करने वाले जो दो पुलिस के कर्मचारी थे वो उधर आ गए, और वो हमने तीनों ने मिला के उसको, हम तीनों भी उसमें बैठ गए कैब में, और उन्होंने हमें आगे, वो पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले आगे चलते उनको रास्ता तैयार करके मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन उसमें लगभग 20 से 25 मिनट, मतलब 15-20 मिनट के आसपास उतना टाइम तो चला गया, और उसका बहुत स्वेलिंग हो रहा था। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उसका वो ये खो गया था, उसका बेहोश हो गया था। तो बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया, और डॉक्टर ने उन्होंने अपना CPR वगैरह वो ट्रीटमेंट चालू कर दी। लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि भाई हम उसका बहुत सारा ये हो गया, हार्ट का रेट लगभग पहले से ही वो उसका हाथ बंद पड़ पाया है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे 15-20 मिनट के बाद और कोशिश करके उन्होंने लास्ट में मेरे बेटे को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। तो ये अनहोनी मेरे साथ जो हुई है, और सिर्फ ये अपने जो रोड है और जो गड्ढे हैं, मतलब पुणे में ही नहीं बल्कि सब जगह यही हाल है। और ऐसा है कि गड्ढे भरते हैं तो 5 दिन में उसका उसमें कुछ मिट्टी मिट्टी मिला देते हैं लगभग, तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे गड्ढे, अगर आपको देखना है तो आप अभी जाके देख सकते हो रोड की हालत क्या है, कितने गड्ढे, एक तरफ का तो बंद ही है एक तरफ में। और वो इंजोड़ी का IT ट्रैफिक है जो उधर से जाता है, जो Phase 1 Phase 2 की तरफ Phase 3 की तरफ जाता है, तो रोज का हाल है। और कोई रोज ना 12-15 दिन महीने में एक दिन ऐसा इंसिडेंट होते रहता है, जो कि बहुत सारे लोडिंग व्हीकल जो रहते हैं जिसको अलाउड नहीं है उस टाइम में, वो भी उधर दिन रात उनका चालू रहता है, जो कि टैंकर्स हो, डिपर हो, डंपर हो, या फिर और कोई जो नाव व्हीकल्स है वो हमेशा चालू रहते हैं। इसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जाती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को कब जाके वो जगने वाले हैं, कब जाके वो जो भी रूल्स है रेगुलेशन से लाने वाले हैं। और आम तो ये मेरा ये मतलब अभी मेरे मेरे को तो सहानुभूति देने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरा जो बेटा उसमें लॉस हुआ है वो कौन भर के दे सकता है क्या? तो मेरा ये सवाल है आपसे कि प्रशासन और जो भी शासन है उनसे कि भाई आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर दीजिए, कि जो अच्छे रोड्स हो, अच्छा जो कि पॉलिटिक रूल्स फॉलो करे, और जो भी जिनके लिए रूल्स लगाए वो भी फॉलो करे, तो कुछ ना कुछ जाके बाकी के लोगों
1: जी
0: को, तो मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया लेकिन बाकी के लोगों की तो बच सकती है। क्योंकि ये बात आज से आप भी अगर देखते हो तो बहुत बार बार बार बार होते ही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उस पर कंट्रोल हो सके। और
1: संदीप जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि गणेश पूजा

0: से पहले सड़कों के सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। ऋषभ के साथ जो हुआ उसके बाद आप इस वादे को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि सितंबर 14 के अंदर अंदर सारे गड्ढे को रिपेयर किए जाएंगे।
1: देखिए, वो जो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है तो उनका तो डेडलाइन रहा होगा, लेकिन अभी क्या है कि मैं मतलब अभी तो मेरे बेटे की जान चली गई है, तो एटलीस्ट गड्ढे भरे होते, ठीक तरह से काम किया होता ठेकेदारों ने या भी जो भी करने वाले इनके अंडर आता है, तो उधर का एक प्रॉब्लम है कि ये रोड करेगा कौन, एक एमआईडीसी, कोई बोलता है कि एमआईडीसी के अंदर है तो एमआईडीसी वाले करेंगे, और दूसरे बोलते हैं कि ये इसके पीएमआरडी में आता है तो पीएमआरडी वाले करेंगे, तो उनको ही पता नहीं कि कौन कर रहा है, कौन मालिक है। और अब आप अगर उधर जाकर देखोगे तो इतनी सारी बड़ी सोसाइटीज है, गोदरेज है, वीटीपी है, बहुत सारे सोसाइटीज है, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट लिया है, वो बहुत सारा टैक्स भी भरते है, लेकिन उनके बावजूद उनको सिर्फ गड्ढे, पानी और उसकी वजह से मच्छर और यही यही रोज का हाल है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से या जो भी वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उनसे अपील है कि भाई आप एक कुछ ना कुछ तो एक सेंटर पॉइंट निकाल के कुछ ये जल्दी कर लीजिए, ताकि बाकी लोगों को, आम लोगों को तकलीफ ना मिले और वो अपना डेली रूटीन है वो ठीक तरह से निभा पाए, या फिर ऑफिस या जब भी किसी मार्केट या किसी के किसी भी चीज के लिए उसे जाना हो तो वो ठीक तरह से कर पाए।
0: हम एनडीटीवी की तरफ से फिर से हम बताते हैं आपको संदीप जी कि हम सवाल पूछते रहेंगे इस मुद्दे पर और हम रिपोर्ट करते रहेंगे। जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉट होल्स जो है, हम सवाल करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू।
2: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.

0: Is very critical, while other also got some injuries and the treatment is going on.
1: Right, Ranveer, thanks for sharing those crucial updates here with us, where an amusement ride turns fatal with two women critically injured in Lucknow. On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up.
2: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha. Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary.
1: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
3: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्या पुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
4: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात तो सही है, लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
5: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए। मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए, जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए वक्त देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए।
1: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
6: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से, नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे हैं बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है।
7: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September, and we will wholeheartedly support that protest.
8: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो।
1: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adyala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
9: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adyala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A three-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adyala jail to Shifa International Hospital within 48 hours. The court has directed that he should remain there until at least the next hearing on September 16th. The intervention follows fresh concerns over Khan's physical condition. A medical report submitted to the court indicated fluctuating and uncontrolled blood pressure, palpitations, headaches, and anxiety. Jail authorities have linked some of the anxiety to restricted contact with his family. However, one of the most serious concerns has been his eyesight. Khan had developed a retinal condition affecting his right eye.
10: सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्हों बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं।
9: The issue is not just medical. It is also about how Khan has been kept inside the Adyala jail. Khan supporters have repeatedly alleged that he has been kept in isolation and has been subjected to mental and physical torture. Amid all of this, the Supreme Court's order represents a delicate balance. On the one side, Khan's constitutional right to health and medical care. On the other, the authorities' concerns over security, access and political mobilization. Bureau Report, NDTV.
1: And well, that's all that we could pack for you in this edition. Slipping into a very short break. Good night. See you tomorrow.

0: welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. And as always, when it really matters, the buck stops here. It's the national song, but it seems that even over this, we can't forge a national consensus, making many wonder, will it now be a case of your Vande Mataram versus my Vande Mataram? Will the national song now also be held hostage to political partisanship? Consider this. For the third time in the last week, the Congress has found itself under scrutiny over the national song. First, the BJP accused Sonia Gandhi of attempting to halt the singing of Vande Mataram midway during an Independence Day event at the Congress headquarters. Then it emerged that the Congress government in Kerala had done away with the national song altogether at all Independence Day functions in the state. And finally on Monday, Congress Chief Mallikarjun Kharge did sing the national song in a Congress event in Goa, but only the first two stanzas. Under attack, the Congress's argument is very simple. This is the national song that was adopted in 1937. This is the song that was sung by freedom fighters, by leaders of the Congress, and that is the way it should remain. The BJP, though, is questioning the hesitation and calling the attempt to avoid or truncate the song a sign of disdain and of disrespect.
1: Complaint, wo kya file kari? Jo Mahatma Gandhi ji वंदे मातरम गाते वही में ही गया जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गया अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर
2: अरे मैं जब एमएलए बना था ये अमित शाह अभी उठा नहीं था उनका कितना 57-58 है कितना हाँ ये सब 56-57 साल वाले हैं अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े तुम लड़े बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो
3: क्या औकात है अटैक करने की वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने ये थे तब धूम दबा के या तो गायब हो गए थे या धूम हिला के अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे ये बोलेंगे वंदे मातरम पे औकात है इनकी आ जाए सामने डिबेट करें वंदे मातरम हम बताते हैं इनको तब वंदे मातरम इन्हें गाली लगती थी
4: 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे कांग्रेस ने उसी को बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था
5: कांग्रेस पार्टी के नेता विशेष रूप से गांधी परिवार और गांधी परिवार की मिजाजपुर से करने वाले उनके सारे वरिष्ठ नेता वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो देश की कानून और व्यवस्था से ऊपर है ऐसे आप 1000 एक उदाहरण ढूंढ सकते हो
6: पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते जितना कि वो लोग अपने तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं लेकिन कांग्रेस जो है मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि बीजेपी बहुत ही बत्ती बनकर देश
0: So while the Congress talks about technicalities and history, making matters worse for them are leaders like their Member of Parliament, Imran Masood, who made the singing of Vande Mataram an issue about his faith.
7: जब वंदे मातरम को इनका विरोध था वंदे मातरम बोल के लोग नारा दे के जेल में जाते थे उस वक्त ये लोग भागते थे इनका वंदे मातरम को विरोध था और आज वंदे मातरम की बात करते हैं वो पूरा वंदे मातरम वो जानबूझ के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं
8: भैया आप पढ़ो ना मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा मेरे सीधा सीधा है संविधान ने मुझे अधिकार दिया ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं?
0: And that brings us to the simple questions. Will the national song now be sung in its various versions? Why the discomfort with Vande Mataram in full? And is the national song being used to bait the opposition into a test of nationalism? And let me actually start by putting that question to Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP, and also somebody who has an additional responsibility. Congratulations, first of all, on that, Pradeep
9: Bhandari.
0: Thank
9: you, Padmaji.
0: The Congress will say this was the version, and that's what Mr. Kharge said, that Jawaharlal Nehru sung this version, Rabindranath Thakur sung this version, Gandhiji sung this version. So why should the Congress sing any other version just because you insist?
9: We all follow the Constitution of India, and the Constitution of India tells us that any law which is passed by the Indian Parliament has to be followed by the citizens of the country, and every patriot does it who believes in the Constitution of India. Only those who are political fronts of the Dimagi Naxal ecosystem will not follow the law of the land. So A, this is the law of the land which is passed by the parliament. B, let me take the argument forward. If we extend this argument ki bhai Musalman ke meta ko dikkat hai, hame dikkat hai, usko dikkat hai, with that same concept, Article 370 was abrogated by the parliament of the country. Earlier, you used to have two flags, not just one national flag, and the Congress also opposed it. With the same premise, the Congress party even opposed CA. With the same premise, the Congress party has opposed various laws passed by the parliament of the country. And this is exactly the Dimagi Naxal ecosystem which the Prime Minister spoke about. But I'll make a very important point, and factual inaccuracies in Congress's argument. Factual inaccuracy number one, that A, is the Congress party indicating that every freedom fighter who sang Vande Mataram in entirety in 1905 was doing Hindu-Muslim? Point number one. Point number two, it was no other freedom fighter except Jawaharlal Nehru who succumbed to Muslim League's pressure in 1937. I have Nehru on record on 20th October 1937 saying that according to Nehru, it would irritate the Muslim League and Muslims. And with the same premise, you had the partition happening. So just because something has happened does not mean it is correct. And I'll tell you why am I saying. On the eve of independence, on 15th August 1947, on 6:30 a.m., on Akashwani radio, you have Sardar Patel requesting Pandit Omkarnath Thakur to recite the entire Vande Mataram. On 15th August, on his personal request, because Nehru had objected to it. So the essence of the Indian constitution always was the entire Vande Mataram, and more importantly, Padmaja, it's the law of the land which everybody has to apply to. If you do not do so, well, fine, that exposes your Dimagi Naxal mindset and law will take it soon.
0: Okay, you brought in Dimagi Naxal also. I will put that, question. I will put that question.
9: Will you follow the law of the land or not as a citizen of the country?
0: Okay, I will put that question to Hussain Dalwai and Vivek Bansal, both from the Congress, who are joining us in just a second. But I want to also bring in Sumitra Chatterjee, who is an MLA of the BJP, full disclosure, and a descendant of Bankim Chand Chatterjee himself. Mr. Chatterjee, you have written a very long letter to Mrs. Sonia Gandhi, but I want to point out some parts of what you have said. You have said ki aapke hav bhav dekh karke main atyant vyathit ho gaya aur ek gehri peeda shunyata aur shobh ke saath main ye patra likh raha hu. Now the thing is, the Congress is saying that Vande Mataram is being used to almost test their patriotism. हर चीज पे जो है आप उनका एक पेट्रियोटिज्म का टेस्ट करने लगते हैं कि अगर आपने ये नहीं गाया है तो दिस मीन्स दैट वी आर नॉट नेशनलिस्टिक, वी आर नॉट पेट्रियोटिक.
10: पॉइंट, बट द थिंग इज दैट वंदे मातरम एज पर ऋषि अरबिंदो इट इज नॉट ओनली अ सॉन्ग, इट इज इट्स अ रिलीजन ऑफ पेट्रियोटिज्म. इफ कांग्रेस थिंक्स दैट दे आर अबव ऑल दीस, then I have nothing to say about the Congress, because Congress claims that they can have their abridged version of Vande Mataram, because they think that Vande Mataram is their own right. They can do whatever they want with Vande Mataram. I was shocked by the behavior, in spite of the law of the land says that while Vande Mataram is being sung, one has to give the respect as the national anthem is being given. So I wrote this letter to Madam Sonia Gandhi.
0: But what did you make of the entire episode that took place on the 15th of August? You know, was there hesitation? Was there discomfort? Because you've described it at length in your letter.
10: It was not hesitation. It was a purposeful act. It was purposely done just to show disrespect just to show whatever BJP is doing, they are against it. Just to show that they are above all the laws, because Congress feels the Bharat is their fiefdom.
0: Okay, Bharat is their fiefdom. Let me put that question now to Hussain Dalvai of the Congress, who also joins us. Mr. Dalvai, BJP कह रही है कि आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि भारत उनका एक फीफडम है, इसीलिए जानबूझकर वंदे मातरम को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। जब एक कानून आ गया है तो कानून के तहत सारे छंद गाए जाने चाहिए, ऑल ऑफ देम शुड बी सांग।
7: मेरे ख्याल से इसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत गैर समझ है। ऐसा है, ये बंकिम चंद्र जी ने जो आनंद मठ नाम की नावेल लिखी थी वो 1882 को प्रसिद्ध हो गई। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वो गाया गया था, लेकिन उसमें रविंद्रनाथ जी ठाकुर साहब ने ये कहा था, ठाकुर साहब ने, कि इसके दो स्टांजाज ही गाइए। ये पहले मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, ये 6 स्टांजाज हैं, लेकिन 6 स्टांजाज में से 2 स्टांजाज संस्कृत में है, आगे के स्टांजाज जो है वो इसमें है, बंगाली में है, और 2 स्टांजाज

0: ये सुजलाम सुफलाम, ये देश कैसा सुजलाम सुफलाम है, इसके बारे में संस्कृत में वो गाया गया है और वही अडॉप्ट किया गया था ये देखिए। और 1950 में जब इसके बारे में इसमें बहस हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस वक्त वो 1950 में ये नेशनल सॉन्ग करके स्वीकारा गया, नेशनल एंथम करके नहीं, लेकिन उसका स्टेटस वही था और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन दो स्टैंडर्ड्स ही स्वीकारे गए थे।
1: पर सर,
0: और वो
1: तो
0: जब
1: आज के कानून
0: पारित हुआ उस वक्त
1: जरा सुनिए
0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें थे, उन्होंने भी मान्य किया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद वाजपेयी साहब का सरकार आया, उन्होंने भी मान्य किया, उन्होंने सब लोग मान्य करते थे। एक बात मैं बोलता हूँ कि आज इतने बड़े पैमाने पे ये सारे वंदे मातरम की बातें करते हैं, मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वंदे मातरम की घोषणा दे के नारा दे के लोग जेल में जाते थे, पुलिस के पटके खाते थे, लाठी खाते थे, गोलियां खाते थे और जेल में जाते थे। मौलाना आजाद भी वैसे ही गए, खान अब्दुल गफ्फर खान भी सारे मुसलमान जो गए वैसे गए।
1: हम इतिहास को डिस्कस कर चुके हैं, 2026 में अगर कानून आया है क्या हर किसी को वो कानून मानना चाहिए? और वंदे मातरम को मैं एक एज अ फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि उसको पूरे 6 अगर छंद गा लिए जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
0: ये ऐसा
1: उसके 6 स्टैंजा गा के बिगड़ क्या जाएगा?
0: इसकी थर्ड ये देखिए, उसकी ठीक ढंग से चर्चा नहीं हुई, कानून गड़बड़ी में पास किया गया, ठीक ढंग से उसकी चर्चा नहीं हो गई थी, वो पूरी चर्चा होनी चाहिए थे और उसके बाद पास करेंगे तो मैं ये कहूंगा।
1: ये तो टेक्निकलिटी है,
0: बोल सकते हैं
1: ये आप टेक्निकलिटी कर रहे हैं। मैं छोटा सा
0: मेरा सुनने वाले होंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपकी ये जो आदत है ना, बिल्कुल गलत बात है। मेरा सुनिए, आप कौन लगते हैं ऐसे इस तरह से बातें करने वाले? मुझे बुलाया है ना, मुझे बुलाया तो मैं ठीक ढंग से बात करो, पहले मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। आप चमचेगिरी सरकार की मत करो, मुझे बोलने दो।
1: सरकार की बात नहीं है ये, राष्ट्रगान की
0: है कि इसमें ये, अरे राष्ट्रगान है, हम भी मानते हैं। ये देखिए, मैं हुसैन दलवाई हूँ, मैं गणपति के उत्सव में जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल ही नहीं, ये इस देश के सेक्युलरिज्म का सवाल है, ये आप लोग जानते ही नहीं। ये सेक्युलरिज्म खलास करना चाहते हैं, ये जो इसराइल में जो राज है ना, वैसा राज यहाँ चलाना चाहते हैं।
1: पर वंदे मातरम पूरा गाने से सेक्युलरिज्म कैसे खत्म हो जाएगा?
0: हिटलर चाहिए,
1: सेक्युलरिज्म कैसे खतरे में आएगा वंदे मातरम अगर पूरा?
0: सवाल ही खत्म हो जाएगा
1: कैसे?
0: सवाल ही नहीं, हर बात में ये हो रहा है मैडम, हर बात में जो चला है ना हिंदुत्व हिंदुत्व, इसका मतलब ऐसा है दे वॉन्ट टू स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
1: How?
0: ये उनके दिमाग में है।
1: What in the वंदे मातरम?
0: बोलकर गुरुजी बोले
1: हैं
0: ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, गोडवल गुरुजी बोले हैं। वो गोडवलकर गुरुजी को बोलते हैं कि ये गलत था, ऐसा बोल रहे हैं क्या?
1: सर, लेट्स लीव असाइड गोडवलकर फॉर अ सेकंड, आई विल आस्क यू वेरी डायरेक्टली, यू सेड दे वांट टू अटैक सेक्युलरिज्म,
0: गलत बात है।
1: व्हाट इन वंदे मातरम पुट सेक्युलरिज्म एट रिस्क?
0: ये देखिए, वंदे मातरम की दो स्टांजा जो संस्कृत में आए हैं उसमें सुजलाम सुफलाम इस देश के निसर्ग की और इस देश की बड़ी तारीफ की गई है। आगे के 4 जो हैं उसमें हिंदू देव देवता हैं, इसलिए टैगोर साहब ने कहा कि ये दो स्टांजा जी लीजिए, बाकी का मत लीजिए। मेरा ये कहना नहीं कि आज क्या करने का, मेरा कहना ऐसा है कि जिनको ये देश हिंदुत्ववादी बनाना है इसलिए जानबूझ के लाया गया है, दूसरी कोई बात नहीं। ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल नहीं, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ की बात है, ये बात जरा ध्यान में लीजिए। ये सेक्युलरिज्म मानते हैं क्या? आप इनको क्यों नहीं पूछते क्या आप सेक्युलरिज्म मानते?
1: पूछ लेते हैं। सौमित्र चटर्जी, सौमित्र चटर्जी इज अ डिसेंडेंट,
0: वो
1: सौमित्र चटर्जी इज अ बंकिम, इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बंकिम चटर्जी। मिस्टर चटर्जी, लिसन टू मिस्टर दलाल, ही सेइंग वो गणपति में जाते हैं बट डोंट ट्राई एंड इम्पोज हिंदुत्व आइडियाज थ्रू वंदे मातरम ऑन हिम और एनीवन एल्स।

0: That is the way he is talking. It shows how Congress thinks that India is by 5-0. The way he is establishing his ideas, he is still thinking that India is their 5-0. And more and above, he is talking of secularism. When the constitution was made, was there the term secularism in the preamble? He is talking of the constituent assembly, everything. Was the term secularism was in the preamble? I put the question to him.
1: Mr. Dalvai, please respond, and we will cut to the big windows and come to Pradeep Bhandari also. Then, Mr. Dalvai.
2: ऐसा है प्रियम्बल में है कि नहीं ये सवाल नहीं है. सेक्युलर और समाजवादी ये बातें डाली गई है, वो मान्य की गई है, सब लोगों ने मान्य किया था उसको. अब भाजप ने विरोध नहीं किया था, ध्यान में रख ये. अभी इस तरह का सवाल उठाना भी गलत है. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये सेक्युलर है. बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार ये कहा है. अभी सेक्युलरिज्म के खिलाफ के जो लोग हैं वो जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं. दे वांट टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सब चला है.
1: प्रदीप भंडारी, ये तो हो गया ना गड़े मुर्दे उखाड़ना. द क्वेश्चन व्हिच हैड बीन सेटल्ड फॉर डेकेड्स, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्लेम पैशंस नाउ.
3: मैडम, सेट डेकेड्स तक तो ये कह रहे थे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा भी फहरा देना चाहिए, आर्टिकल 370 भी रहना चाहिए सेक्युलरिज्म के नाम पे. इसका मतलब थोड़ी अन्याय होने देंगे. पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे ने झूठ बोला, उन्होंने दो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं किए थे. दूसरा पद्मजा, लेट्स टेक देयर आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड. इनने बोला कि भाई ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है. मैं आर्मी के वॉर क्राय पढ़ना चाहता हूं. गोरखा राइफल्स का वॉर क्राय है, जय महाकाली आयो गोरखाली. क्या ये कह रहे हैं कि आर्मी भी कम्युनल है? हुसैन दलवाई तो ये भी कहेंगे आर्मी भी कम्युनल है. दूसरी रेजिमेंट देते हैं, राजपूत रेजिमेंट कहती है बोलो बजरंग बली की जय. क्या इनके हिसाब से जो मुसलमान आर्मी के अंदर जा रहा है वो कम्युनल मुसलमान है? आर्मी के वॉर क्राय के अंदर देश की संस्कृति है. अगर ये हुसैन दलवाई की जिन्ने वाले माइंडसेट को आगे लेके जाए तो बोलेंगे आर्मी के अंदर भी जो ये क्राय चल रहा है वो भी मुसलमान वाला, मुसलमानों के खिलाफ है. ये जिन्ना वाली सोच है. वंदे मातरम वो संग बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन 1905. रहमतुल्ला सहवानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1896. वॉज ही अ कम्युनल मुस्लिम एज पर हिम? वॉज बाल गंगाधर कम्युनल? वॉज रविंद्रनाथ ठाकुर हु सैंग द एंटायर वंदे मातरम इन 1896 कम्युनल? इट वॉज प्रिसाइसली नेहरू इन 1937 हु सकम टू जिन्ना प्रेशर and who agreed to partition of the
1: country. Rabindranath Tagore agreed to it. When Nehru ji spoke to Rabindranath Tagore,
3: he agreed. Because Nehru prevailed. With that logic, even temporarily, there was Article 370 which other freedom members of the Constituent Assembly had to agree as temporary. But these people made it as permanent. And it was Shyama Prasad Mukherjee who opposed it. Something which is a historical wrong has to be corrected because the spirit of the Indian Constitution is entire Vande Mataram. Mr. What is Hindu Muslim in Vande Mataram? And if it is Hindu Muslim, are the war cries of army also Hindu Muslim?
1: Mr.
2: ऐसा ये गलत बातें कहते हैं. एक तो ध्यान में रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब पास हुई तो वंदे मातरम के दो स्टैंजाज ही उसमें.
3: आप उनका दिखा दो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला दो स्टैंजाज होने चाहिए.
2: की आदत है बार
3: मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं दिलवाई साहब.
2: उनका झूठ सही
3: दिलवाई साहब कोट कर दो.
2: एक तरह से एक आर्मी का आदमी
3: दिलवाई साहब कोट कर दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को. मैंने और कोट कर दूंगा.
2: ये नेशनल सॉन्ग क्या है इसमें फर्क नहीं इनको मालूम.
3: अरे दलवाई साहब, मैं आपको नेहरू का कोट है
2: पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकता है.
3: अरे वो अलग बात है. वॉर क्राय आर्मी का उसमें भी कम्युनल है क्या?
2: अल्लाह अकबर बोल के भी कासिम का
3: ना ना ना ना ना अल्लाह अकबर कोई भारत की सेना का वॉर क्राय नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की सेना का है. आप अपने घर पर अल्लाह अकबर बोलते इबादत करते हुए. आर्मी का वॉर क्राय अल्लाह अकबर नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी का वॉर क्राय अल्लाह अकबर है. मैंने वॉर क्राय बताया, वापस से बोलता हूँ. राजपूत रेजिमेंट कहती है बोलो बजरंग बली की जय. क्या मुसलमानों को बोलोगे कि हिंदुस्तान की आर्मी में नहीं है आपके साथ से? व्हाट इज ही सेइंग? No, let's take that argument forward.
1: Let him reply. Let him reply. Mr. Dalvai, about the war cry of the Indian Army.
3: That is also with that logic.
1: Go on, Dalvai Saab. About the war cry of the Indian Army, when any soldier chants Bajrang Bali ki Jai or they invoke Durga Mata on the war field.
2: Indian Army ki baat alag. Main ladai karne ke liye jata hoon to ko kya nara deta hoon, ye alag baat hai.
3: अरे वो वॉर क्राय क्या बात कर रहे हैं?
2: सॉन्ग की बात
3: में क्या अलग हो गया?
2: ये दो बातें इकट्ठा लाना बिल्कुल गलत बात है
3: दलवाई साहब. वंदे मातरम पूरे गाने में क्या एंटी मुसलमान?
2: अल्लाह अकबर बोल के भी हल्ला कर सकता है. ये इनका ये

0: वंदे मातरम में नहीं जाएंगे तो आप मान रहे हो ना कि दैट इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द कांग्रेस. तो पद्मजा सोनिया गांधी लाइट इज व्हाट कांग्रेस इज अग्री टू. देयर कैन ओनली बी टू थिंग्स. अरे सर लीव दैट असाइड. इट इज ऑल फेक न्यूज. अभी वी वर नॉट फाइव स्टार जेल. वी वर नॉट इन फाइव स्टार जेल लाइक जवाहरलाल नेहरू. वी वेंट टू काला पानी. ओके रिलैक्स.
1: ड्यूरिंग द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट प्लीज.
0: यस बाबा साहेब अंबेडकर ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट. सो यू कॉल बाबा साहेब अंबेडकर एज एन एंटीनेशनल. व्हाट आर यू सेइंग?
1: What is your contribution in the
2: freedom? Okay, let's bring it back to the present. Let's bring it back to the present because the more we try and go back to the past, we go back a century, then what is happening in the present is missed out. And Mr. Dalwai, since you said that Vande Mataram was an effort to try and impose Hindutva, or at least the remaining four stanzas were an attempt to impose Hindutva, let me quote to you what Maulana Abul Kalam Azad, the great Islamic scholar and thinker, he said about Vande Mataram. Not just two stanzas, all of Vande Mataram. He said it is a fusion of endogenic creativity, Islamic doctrines of Wahadat, Edeen and Sulah-e-Kul. Remember that when he was the Congress president, first elected at the age of 35 in 1923 and held the longest continuous term from 1940 to 1946, Vande Mataram was sung in its entirety at every session of the party. So at that time, in 1923, when he was first elected, Vande Mataram was being sung in its entirety. So Abul Kalam Azad had no problem with all of Vande Mataram. He didn't think that it was an imposition of Hindutva, Dalwai Saab.
3: मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कमाल है. दो स्टैंजास का प्रॉब्लम मौलाना आजाद को नहीं था और
0: स्टैंजास की बात है. फिर ये झूठ बोल रहे.
3: ये वंदे मातरम बोल के लोग जरा अभी मेरा सुनेंगे क्या?
2: सर वो 1923 में बने थे. ही वाज फर्स्ट इलेक्टेड इन 1923. दैट टाइम वंदे मातरम हैड नॉट बीन ट्रंकेटेड.
3: मौलाना आजाद ने भी लड़ाई की ब्रिटिशों के साथ.
2: पर सर उन्होंने तो पूरा वंदे मातरम गाया भी गवाया भी.
3: वंदे मातरम वंदे मातरम. ये लोग तो वंदे मातरम के खिलाफ थे उस वक्त. ध्यान में रखिए वंदे मातरम बोलना पड़ेगा इसलिए भाग जाते थे. वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते रहते. ब्रिटिशों के खिलाफ.
2: सर लीव दैट असाइड. आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द फंडामेंटल क्वेश्चन यू रेज्ड अर्लियर. कि हमें दो स्टैंजा से प्रॉब्लम नहीं है. जो बाकी के स्टैंजा है वो हिंदुत्व इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि वहां दुर्गा स्तुति की बात की गई है.
3: स्वतंत्र दिन मनाया नहीं जाता.
2: सर कोई बात नहीं. आप उनको अटैक कीजिए. आप उनको अटैक कीजिए. दैट्स अ पॉलिटिकल वॉर. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद वंदे मातरम?
3: उसमें जो अशोक चक्र है वो भी उनको मान्य नहीं. ये होलकर कोरो ने साफ लिखा है. अभी तक वो ये कर रहे थे. अभी हमें वंदे मातरम की बात.
2: हुसैन दलवाई साहब, बाय ऑल मींस यू वांट टू डिबेट विद द बीजेपी एंड आरएसएस ऑन देयर कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यू प्लीज डू सो. माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई देयर इज एन ऑपोजिशन टू वंदे मातरम इन इट्स एंटायरिटी. लेट मी कोट टू यू अनदर एग्जांपल. डू यू नो व्हाट अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस? लेट मी कोट टू यू रफी अहमद किदवई. He said Vande Mataram has been sung at the beginning of Congress sessions for years. Muslims began opposing it only since 1930. This is Rafi Ahmed Kidwai saying it. Bengali writer Rezaul Karim, he also echoed a similar sentiment in 1930s, where he wrote that it is the British who incited the controversy to exclude Muslims from the freedom struggle. So this entire thing that Vande Mataram is against Islam or it is imposition of Hindutva, you had Rezaul Karim who said that it is the British who were trying to divide and rule by making Vande Mataram seem anti-Muslim. And these are all tall leaders in the Congress who said it. We are succumbing to what the British were trying to do at that time, sir, in the 1930s.
3: एक तो ऑफिशियल इसमें पूरा वंदे मातरम बोलने के बारे में कानून हो गया. बाहर कोई क्या करता है. झंडा वंदन जब होता है तो वंदे मातरम बोला ही नहीं जाता. बहुत जगह जहाँ बोला जाता है दो स्टैंजर्स बोले जाते हैं उसमें कोई ऑफिशियल उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं लेकिन मुसलमानों को ये चर्चा में ये कहूँगा अगर कहाँ पूरा वंदे मातरम कहता है तो उसका आदर कीजिए. वो आप नहीं कहेंगे तो भी चलेगा लेकिन उसका आदर होना चाहिए. कहाँ भी अनादर करने की कोई भी मजहबी बात है उसका अनादर किसने भी नहीं करना चाहिए. ये मेरा हमेशा स्टैंड रहा है.
2: थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा अनादर नहीं होना चाहिए. तो फिर आप ये बता दीजिए कि उसको पूरा क्यों नहीं गाया जा रहा है.

0: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
1: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
2: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
3: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
4: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
1: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mulange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
2: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी

0: The Ala jail and to and a private hospital because of his worsening health conditions. But the Pakistan government is against that judgment now, and the Pakistan government says that we will challenge that order. Meanwhile, India's journey can be traced through the words of its leaders. Over the last decade, Prime Minister Modi's Independence Day speeches have evolved from basic needs and plugging gaps to ambition, capability, and global leadership. We look back at that changing vocabulary of a changing India.
1: It's faced like toilets, electricity, poverty, roads, bank accounts, and fertilizer shortages. The Prime Minister's challenge was to fix what was broken, reach those who had been left out. Over the years, his vocabulary began to change. The thrust of his speech moved from access to aspiration, from plugging gaps to building capability, from solving immediate problems to creating systems to prevent those problems. The sweep of Prime Minister Narendra Modi's Independence Day addresses has defined New India's tryst with a 21st century destiny. These are not simply annual speeches, they are a running record of the country's transformation.
2: 21st sadi mein hum jee rahe hain. Kya kabhi hamare man ko peeda hui? Aaj bhi hamari mataon behno ko khule mein shauch ke liye jana chahte hain. Dignity of women. Kya ye hum sabka daitv nahi hai?
3: Aaj ki digital duniya mein, aaj ki technology mein cheap ka mahatma hum samajhte hain. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
4: ग्रामीण सड़क हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी देश के नाम को रोशन करने में कभी कोई कमी नहीं रखी। विश्व के संदर्भ में हो और भारत की आवश्यकता के संदर्भ में कौन हिंदुस्तानी गर्व नहीं करेगा जब मेरे देश के वैज्ञानिकों ने एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया था। चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है।
1: Alleviating the poor in the country had always been on top of the list of the Prime Minister's concerns. And over the past 12 years, this is a topic that he has addressed in his speeches.
2: सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजय श्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले।
4: जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़
2: हमने

0: एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है।
1: The Prime Minister's respect for women has been evident in his actions and their pain that he tended to personalize.
0: 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ वुमेन क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं।
1: The stress of the agriculture sector and its removal has been one of the cornerstones of the Prime Minister's policies, something he has been striving towards eradicating right from the word go.
0: आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा?
2: इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहा था, राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। सालों से चर्चा चल रही थी, फाइलें चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी, लेकिन हमने फैसला लिया, हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा।
0: भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है।
1: A nation is strong when its economy is strengthened right down to its most basic participants. In this, the Prime Minister's stand has been towards pushing for self-confidence and self-reliant innovation amongst the young entrepreneurs of India.
0: इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा सरकम है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया
2: और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।
1: पुशिंग फॉर हाई एंड सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी, 12 years of advancement has built a solid foundation for India at the helm of enterprise.
3: Electrical se lekar ke electronic tak, from make in India, chemicals se lekar ke pharmaceutical tak, from make in India, automobile se lekar ke agro value addition tak, from make in India, paper ho ya plastic, from make in India, सम सैटेलाइट हो या सम मरीन, सम मेक इन इंडिया।
0: इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करें। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।
2: एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए।
1: Security is beyond compromise, and the Prime Minister has been very clear in his attitude towards how the scourge of Naxalism should be handled. He has always made it a point to thank the forces that defended the nation from homegrown extremism.
0: And I am happy that in our security forces' efforts, especially in the left-wing extremism areas, in a very large amount, नौजवान वापिस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवाद देश को रक्त से रंजित कर रहा है, आए दिन हिंसा की वारदातें करना, भाग जाना, जंगलों में छिप जाना, लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण, विकास की नई नई योजनाओं के कारण, जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों के कारण,
4: जो लैब

0: हेल्पिंग एक्सट्रीमिज्म 126 जिलों में मौत के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा था, आज वो कम होकर के करीब करीब 90 जिलों तक आ गया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था, माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं।
0: 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
2: 60 साल के से भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे।
1: यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजूबा कर रहा है। रियल टाइम ट्रांजेक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। आपने झारखंड
3: के बाहर Over the years, the Prime Minister's vocabulary has changed as his concerns and his concentration moved from access to aspiration. He had his mandate very clear in his mind as he saw himself evolve as well with the country. And perhaps that is also why the sweep of his Independence Day addresses have become a phenomenon in themselves.

0: लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हजार रुपये हर महीना कमाता है। जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है।
1: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए। मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए, जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए।
2: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mulangi area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
3: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया गड्ढों के लेते हुए, बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से, नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे हैं बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है।
4: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September, and we will wholeheartedly support that protest.
5: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो।
2: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adiala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
6: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adiala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A three-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adiala jail to Shifa International Hospital within 48 hours. The court has directed that he should remain there until at least the next hearing on September 16th. The intervention follows fresh concerns over Khan's physical condition. A medical report submitted to the court indicated fluctuating and uncontrolled blood pressure, palpitations, headaches, and anxiety. Jail authorities have linked some of the anxiety to restricted contact with his family. However, one of the most serious concerns has been his eyesight. Khan had developed a retinal condition affecting his right eye.
7: सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं।
6: The issue is not just medical. It is also about how Khan has been kept inside the Adiala jail. Khan supporters have repeatedly alleged that he has been kept in isolation and has been subjected to mental and physical torture. Amid all of this, The Supreme Court's order represents a delicate balance. On the one side, Khan's constitutional right to health and medical care. On the other, the authorities' concerns over security, access, and political mobilization. Bureau Report, NDTV.
2: And well, that's all that we could pack for you in this edition. Slipping into a very short break. Good night. See you tomorrow.

0: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
1: Across the country.
0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
2: Launch control, 0 to 100.
3: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
4: This car makes no sense, yet it makes every sense.
5: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
3: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
7: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpit.
8: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
9: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही आता 165,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा. पण ह्या पुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
10: लगता आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नाही आहे. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे है. लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
11: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए। मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए, जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए वक्त देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए।
8: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mulangi area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
12: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया गड्ढों के लेते हुए, बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से, नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे बुझाने चाहिए और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके